सूरज की किरणें सिर्फ अंधेरा नहीं मिटाती बल्कि ये मैसेज देती हैं कि आप में तपने का हौसला है तो आप पूरी दुनिया रोशन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर इट हैपेंस को लेकर। जी हाँ, एक नई सुबह और इस सुबह निकलने वाला ये जो सूरज है ये हमें कह रहा है कि अगर तपने की चाहत है तो पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। यार, सन से बेटर एग्जांपल और कौन सा हो सकता है जो ये बताए कि हम सबको रोशन कर सकते हैं। लेकिन पहले खुद तो तप लें, खुद के स्ट्रगल से तो जीत जाएं, खुद से मोहब्बत तो कर लें, खुद के साथ जो हमारी जंग चल रही है उस पर तो हमें सक्सेस मिल जाए, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी खुद के साथ, है ना जी। तो बस ख्याल रखिए खुद का, खुद के सपनों का, खुद के हौसलों का, और इन्हीं हौसलों के साथ चलिए शुरू करते हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आपके साथ सताक्षी है और फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत की जाए इस अगले ट्रैक से, उसके बाद होंगी ढेर सारी बातें। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

जी हाँ, रेडियो ब्रिस्पानी सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ, और रेडियो ब्रिस्पानी पर इट हैपेंस, जी हाँ इट हैपेंस मॉर्निंग शो इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं। वैसे इट हैपेंस में आपको आगे लेकर चलूं, इसके पहले जरा उन्हें विश कर दूं जिनके लिए ये पल ये वक्त बहुत ही खास है। सो आज इनका बर्थडे है, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। मस्त रहिए जिंदगी में, जिंदगी को जीते रहिए और खुशहाल रहिए। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है उन सभी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और जिंदगी के हर एक फेज को इंजॉय करते रहिए, और जिनके लिए भी ये पल बहुत ही स्पेशल और खास है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्पानी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: SP, big shout out.
1: So welcome back, It Happens में सताक्षी के साथ आप हैं रेडियो प्रस्वानी पर और It Happens में बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ मेरा आपके साथ साथ भी बरकरार है। वैसे हर सुबह देखा जाए तो जब हम सोकर उठते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ना, या तो हम सोते रहें और जो ड्रीम्स रात से देख रहे हैं उन ड्रीम्स में खोए रहें, सपने देखते रहें, या फिर उठें और जो सपने रात में देखे थे ना उनका पीछा करें, भागें और पकड़ के जकड़ लें उन सपनों को और उनको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दें, जद्दोजहद कर डालें। यू नो, सुबह का समय केवल एक नया दिन नहीं होता है बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने का एक नया मौका होता है। तो आपकी जिंदगी का भी अगर कोई भी गोल है, लाइफ का कोई भी गोल है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए और यकीन मानिए, मैंने देखा है आज के दौर में सपने पूरे होते हैं। अगर आप शिद्दत से अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं तो वो दौर बीत गया जब सपने सपने रह जाते थे, आज के दौर में अपने सपने पूरे करने का दम होता है लोगों में। सो बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए It Happens रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

14 मैक्सिंग, भाई सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वर्ड जो है ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो सोचा आज आपके साथ जरा इट हैपेंस में इस पर भी बात हो जाए। प्रोटीन मैक्सिंग ये है क्या? भाई जरूरत से ज्यादा डाइट में प्रोटीन शामिल कर लेना, ये है प्रोटीन मैक्सिंग। और ये हमारा वो यूथ कर रहा है आजकल जिसे मसल्स बहुत स्ट्रांग चाहिए और वेट कम चाहिए। तो भाई ज्यादा प्रोटीन लेने से जल्दबाजी वाला काम हो रहा है और वेट जो है वो कम भी हो रहा है। टमी आपको हमेशा फुल लगता है जिससे आपका खाने का ज्यादा मन नहीं करता है क्योंकि आप हाई प्रोटीन खा रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं ना। हाँ तो देखिए अब इसका बेनिफिट है कि इसके डिमेरिट्स हैं। बेनिफिट की बात करें तो भाई टमी फुल लगता है, आप खाना कम खाते हैं, प्रोटीन की नीड तो पूरी हो ही रही है। लेकिन देखा गया है इसमें जब आप प्रोटीन मैक्सिंग यूज करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। भाई ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो क्या होगा, आप एग खा रहे हैं, आप चिकन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, अब खा तो ऐसी चीजें हैं जिनसे पेट गड़बड़ होना चाहिए ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसके साथ ही साथ हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ एक चीज की शरीर को नीड नहीं होती, हमें मिनरल्स भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें विटामिन्स भी चाहिए, और हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन। तो डॉक्टर की सलाह के बिना, खासकर तब जब आपको कोई हेल्थ इश्यू है या आपको किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशंस में आपको ये प्रोटीन मैक्सिंग जो है ये डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी नहीं करना है यूज। ठीक है जी, तो जरा बच के रहिए, हालत सुधारने की जगह हालत बिगड़ ना जाए इस बात पर फोकस रखिए, और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: वेलकम बैक। इट हैपेंस में आप हैं सताक्षी के साथ और ये है वक्त गानों की हैट्रिक का। आज तीन बैक टू बैक ट्रैक्स आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो आज गानों की हैट्रिक का पहला ट्रैक कौन सा है, आइए सुनिए मेरे साथ।

गानों की हैट्रिक रेडियो प्रसवानी पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गानों की हैट्रिक में, ये आज का लास्ट ट्रैक और अभी इट हैपेंस में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको सुनवाए जाएंगे। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी प्रोटीन मैक्सिंग की, जिसके जरिए वेट कम हो जाता है, जल्दी कम हो जाता है। लेकिन मुझे ये पूछना है आपसे कि शॉर्टकट क्यों, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर भी हम शॉर्टकट की तरफ क्यों भाग रहे हैं? भाई हेल्थ तो इजीली आपकी ठीक हो सकती है ना, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डंबल्स यूज करते हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं तो भी आप फ्लेक्सिबल धीरे धीरे होने लगते हैं, आपका वेट अच्छा होने लगता है, वेट कम होने लगता है। डाइट पर थोड़ा फोकस करना और अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपरली कंप्लीट करना, एक रूटीन फॉलो कर लेना, ये भी तो आपको फिट रख सकता है, हेल्दी रख सकता है। फिर किसी भी शॉर्टकट की तरफ हम क्यों भाग रहे हैं? यू नो, यूथ के साथ दोस्तों आजकल की ये बहुत प्रॉब्लम है कि यूथ को हर चीज शॉर्ट में चाहिए, जल्दी चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि हमने हमेशा ये भी चीजें सीखी हैं कि शॉर्टकट जो है वो भारी पड़ता है, फिर चाहे आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, आपकी सक्सेस हो, आप पर भारी ही पड़ता है। तो इसलिए कम से कम अपनी हेल्थ को लेकर शॉर्टकट मत आजमाइए। और एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

जहाँ सताक्षी के साथ इच्छापन सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर। और देखिए जिंदगी का हर एक पल जो है वो अगर आप अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। उल्टा इस फेस में आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को देंगे तो वो आप खुद होने वाले हैं। दोस्तों जिंदगी में आप ये सोच सकते हैं कि यार मैं हर चीज को ठीक कर दूं या हर चीज मेरे हिसाब से हो, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि ना तो आप हर एक चीज को ठीक कर सकते हैं ना आप हर एक चीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपसे जो लोग भी जुड़े हैं ना, उनका अपना ब्रेन है, अपना दिल है, अपने सपने हैं, अपनी उम्मीदें हैं, तो लोग आपके हिसाब से नहीं चलने वाले। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां और चैन चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

सत श्रीकाल जी, मैं संदेश अलख शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो बरसानी 101.1 ते जबला हो चुके हैं हुण तक दे हम खबरां दा, तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ते हुए हमले के मामले में हमलावर की पछाण जसपाल सिंह वजो हुई है। घटना तो बाद पुलिस ने उसनू हिरासत में ले लिया, पूछगिछ शुरू की। इस दौरान सोशल मीडिया से एक वीडियो घूम रहा है जिस विच दावा किया जा रहा है कि हमले के दोषी जसपाल सिंह सम्मानित किया जा रहा है। वायरल वीडियो में लोग हमलावर जसपाल सिंह पग बन के सम्मानित कर रहे हैं। इस दौरान सीटियां भी वज रही हैं। वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए ने। हालांकि श्रोमणी अकाली दल ने अजे तक सोशल मीडिया से घूम रहे वीडियो की अधिकारित तौर पर पुष्टि नहीं की है। अकाली दल इस पूरे मामले संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की। इस विच हमले के आले दुआले घटनावां ते वायरल वीडियो बारे स्पष्टीकरण देने की उम्मीद है कि जदों अगली बार कुछ होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। इस दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदा के बयान के आधार पर भी घटना की जांच कर रही है। हमले दौरान सुखबीर बादल की सुरक्षा लई तैनात सुरक्षा गार्ड संतोष हेगड़े भी हमलावर नूं रोकने की कोशिश करते हुए जख्मी हो गए। पूरी घटना की जांच पुलिस वल्लों की जा रही है। उधर दूजे पासे पंजाब कांग्रेस से चल रहे काटो कलेश नूं खत्म करन दीआं कोशिशां लगातार जारी हन, पर अजे तक किसे नूं वी सफलता नहीं मिली। उत्थे राहुल गांधी वल्लों सिद्धे इस मामले ते नजर रखण दी गल कही जा रही है। सूत्रां मुताबिक इस सिलसिले विच राहुल गांधी पंजाब दा दौरा वी कर सकदे हन। सूत्रां मुताबिक राहुल गांधी इस महीने पंजाब दा दौरा कर सकदे ने। श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे नतमस्तक होणगे ते पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगू नाल मुलाकात करनगे। जेकर राहुल गांधी पंजाब दा दौरा करदे हन तां उन्हां दिए फेरी काफी अहम रहने वाली है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते चरणजीत सिंह दो वख वख धड़े बन जाण दे मुद्दे नूं हल करन लई कांग्रेस हाईकमांड पहलां भी कोशिशां कर चुकी है। बीते दिन पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल नूं इसे लई पंजाब दे दौरे ते भेजा गया सी। इस तों बाद फिर उन्हां अते राजा वड़िंग दी अगवाई विच हर बूथ कांग्रेस मजबूत मुहिम चलाई गई, पर इस मुहिम विच काफी हंगामा होया। इस मुहिम दौरान तकरीबन हर मीटिंग विच समर्थकां वल्लों चन्नी दे हक विच नारे लगाए गए ते राजा वड़िंग दा विरोध कीता गया। इस विचकार भूपेश बघेल नूं विरोध दा सामना करना पिया। कई बार चन्नी ते वड़िंग दे समर्थक आमणों सामणे भी होए। इस सब घटनाक्रम ने हाईकमांड की चिंता वधा दित्ती है ते इस विचकार भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने अपनी टीम नूं खुद फीडबैक लैके रिपोर्ट पेश करन लई कहा है। जिक्र योग है कि बीते दिन पंजाब कांग्रेस दे कलेश नूं वेखते हुए सीनियर आगू प्रताप सिंह बाजवा ने भी राहुल गांधी नाल मुलाकात कीती सी। इस तों पहलां उन्हां वल्लों पंजाब दे कांग्रेसी विधायकां नाल मुलाकात कीती गई सी ते इस मुलाकात मगरों बाजवा समेत कांग्रसियां दे 15 विधायकां ने राहुल गांधी नूं मिलण लई चिट्ठी लिखी सी। सारे विधायक कलेश दे मसले नूं जल्द तों जल्द हल करन दी अपील उन्हां वल्लों कीती जा रही है। उधर यूक्रेन ने रूस की आर्थिकता डिफेंस सिस्टम ते एक बार फिर वड्डा हमला किया है। यूक्रेन दे लंबी दूरी दे ड्रोना ने रूस ते बाशकोरतोस्तान इलाके विच स्थित रूसी गैस कंपनी दे प्रमुख गजप्रोम नेफ्तखिम सलावत तेल रिफाइनरी अते पेट्रो केमिकल कॉम्पलैक्स नूं निशाना बनाया, जिस तों बाद उत्थे भयानक अग लग गई। यह रिफाइनरी यूक्रेन की सरहद तो लगभग 1300 किलोमीटर दूर स्थित सी। यह रूस दीआं सब तों वड्डीआं रिफाइनरियां विचों इक है, जो सालाना लगभग 10 मिलियन मैट्रिक टन तेल प्रोसैस करती है ते रूसी फौज नूं ईंधन सप्लाई करन विच मदद करती है। इस इलाके विच रूस की सब तों वड्डी ई कामर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज दे एक लॉजिस्टिक गोदाम नूं भी हमले दा सामना करना पिया, जिथे फौजी साजो समान अते ड्रोन पार्ट्स आदि रखे जाण दा शक सी। इस तों इलावा रूस दे ओरेनबर्ग खेतर दे गवर्नर ने मन्या है कि यूक्रेनी हमले तो बाद उर्सक रिफाइनरी दे अहम हिस्से तबाह हो गए हन। अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां कारण

तक 50,000 तो वध खात्यां नूं हटा दिता है। एक कदम किशोरां दे खात्यां ते दुनिया दे पहले बैन मगरों चुक्या गया है। नाल ही कंपनी ने संभावित रेगुलेटरी दखलअंदाजी दे मद्देनजर होर कारवाई करन दा वादा कीता है। मैटा अनुसार दिसंबर विच पाबंदी लागू होने तो लैके जून महीने तक कंपनी ने 4,62,000 शके इंस्टाग्राम खाते तो 2,94,000 शके फेसबुक खाते डीएक्टिवेट किए हैं। जनवरी तक हटाए गए खात्या की गिनती 3,31,000 इंस्टाग्राम खाते 1,73,000 फेसबुक खाते से, जिस विच पिछले कुछ महीनों दौरान भारी वाधा देखा गया है। कंपनी ने कहा है कि उस कानून की पालना करना चाहती है जिसका उसने अते होर प्लेटफार्मा ने खुल के विरोध किया। एक कदम अजिहे समय विच चुकया गया जदों आस्ट्रेलिया का इंटरनेट रेगुलेटर उन्हां प्लेटफार्मा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने विचार कर रहा है जिन्हां की मालकी मैटा कोल है ते ओ कानून की पालना करने लई लोड़ींदे कदम चुकण विच असफल रहे हन। किसी होर प्लेटफार्म ने पालना डेटा जारी नहीं किया जो मैटा द्वारा दी गई मिति सीमा नाल मेल खाता होवे, पर आस्ट्रेलियाई सरकार के आंकड़ों से कई स्वतंत्र अध्ययन ने दिखाया है कि पाबंदी के पहले 3 महीनों में 10 से 8 तो वध अंडर 16 बच्चे अजे भी सोशल मीडिया से हैं। जिक्र योग है कि आस्ट्रेलियाई सरकार ने बच्चों नौजवान किशोरों की शारीरिक मानसिक सेहत से सोशल मीडिया के प्रभाव बारे चिंतावां के चलते प्रस्तावित कीता सी जो 10 दिसंबर तो लागू होया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ biswani@biswani.com। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ 101.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangalan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका To win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर 6 संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुकिया जी, ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद मेरी पसंद सब पसंद रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा, बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bersoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगता है वो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

देखो फिल्मां दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हो तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स अते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर अते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों तां हुण मैं तुहानू ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਗੀਤ।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: It's not just a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वनसनवाने जी आज संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म दे बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च होंदा होंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय होंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पप्पी लैगी सुणो।
2: It's Black Lives.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा अपना हरप्रीत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जिमें तुम पहला दस्या सी ना कि किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है कि या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। तो एवरेज फिल्म केड़ी हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है तो मामूली मुनाफा कमाती है, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी हैगी है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हां जी, तां देखो हुण असली कमाई दा सच जानते हैं। तां लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर दे हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी, तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन दे जी आर जी संदेश अलग दिन आल तुसी बने हुए हो। हुण देखो ओ फुटबॉल क्यों हुंदा है, इस दे विच महत्वपूर्ण इस दे बारे भी गल कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हुंदा है ता कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना हुंदा है, वो ही हुंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी है की है। मूवी दे टिकट आजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन ते लई ए भी देखिया जांदा है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे हैगे ने ते मूवी देखण लई लोग गए हैगे ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओ हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शोले। हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुने होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ के दम से यह फिल्म रफ्तार फड़ती है तो फाइनली बॉक्स ऑफिस से ब्लॉकबस्टर साबित होती है। जिमें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: फाइबर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: लेकिन साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी
13: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है.

0: बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ, फ्राइडे आ गया है, जान में जान आ गई है, मन में सुकून आ गया है और वो जो वाइब है मस्ती की, वो भी हमारे माइंड और हमारे दिल को टेक ओवर कर रही है। क्योंकि फ्राइडे है भाई, फ्राइडे की वाइब ही ऐसी है। फ्राइडे है तो वर्किंग डे, पर वर्किंग डे होकर भी वर्किंग डे नहीं है फ्राइडे, क्योंकि वर्किंग डे है बट स्ट्रेस फ्री है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे हमें दे सकता है। दैट इज द ओनली डे जो कि इतना यूनिक है, मतलब काम करने का दिन है लेकिन सुकून का भी है। जी हाँ, इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। फ्राइडे का प्रोग्राम शुरू होना चाहिए बहुत ही मजेदार चीजों के साथ। और सबसे पहले तो आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं। वेल ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस, बिकॉज हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, फिर चाहे साइकोलॉजिकली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, जैसे भी हो, हमको हेल्दी रहना है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बिना देर किए अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ, जिस गाने का नाम है पहले भी मैं। अब इस गाने के बारे में मैं क्या कहूँ, ये गाना 2024 का सबसे हिट सॉन्ग है और आज भी जो इसकी लय है वो लोगों के दिलों में बहार ला रही है। जी हाँ, एनिमल मूवी का ये गाना पहले भी मैं, विशाल मिश्रा की आवाज में आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ गाने तो जबरदस्त चल रहे हैं। अब जरा मौसम की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि मौसम क्या कह रहा है आज के लिए, प्लस वीकेंड के लिए क्या कह रहा है, क्योंकि मौसम के बारे में जानकर ही तो हम अपनी प्लानिंग करेंगे। मतलब हमें आउटडोर एक्टिविटीज कैसे प्लान करनी है वो हमें मौसम के अकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं अभी अगर अभी की बात की जाए तो 22.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 21.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जैसे मैंने कहा था कि सूरज जो है वो खिला खिला रहेगा और बारिश के चांसेस जो है वो ना के बराबर होंगे, सो वैसा ही हुआ। रात के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी, और ये तो है आज का हाल। अगर कल की बात करें यानी कि सैटरडे की एंड संडे की, तो सैटरडे को 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ बारिश होने के चांसेस हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 50%, जिसमें फेरबदल हो सकता है आपको पता है। लेकिन संडे को 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 80% चांसेस है बारिश होने के। मतलब कल बारिश कम हो सकती है लेकिन परसों ज्यादा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मुझे मौसम की जो है वो हालात बता रहे हैं। सो अपनी प्लानिंग जो है उस हिसाब से कीजिए। अगर आपको बाहर जाना है तो वो प्लानिंग आप कल के लिए कीजिए रादर देन संडे के लिए, क्योंकि संडे को मौसम जो है वो मुझे बारिश आना है यानी कि गीला गीला भीगा भीगा नजर आ रहा है, तो बाहर आप शायद ना जा पाए इतना, और ट्रैफिक भी आपको मिलेगा।

सो रादर देन दैट घर पे एंजॉय कीजिएगा. लेकिन सैटरडे यानी कि कल बारिश जो है वो कम बताई गई है, 50% मतलब चेंजेस उसमें हो सकते हैं. तो मतलब ना के बराबर आप रख सकते हैं इसे और आप कल बाहर जा सकते हैं. जी हाँ, ये है मौसम का हाल. और इसी के साथ अब जरा चलते हैं एक बहुत ही

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main haan tuhanu Pratap Pujari. Ek baar phir, Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe hain.
5: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
6: Saturday 15th August 6:30 PM.
4: Milde hai ji Brisbane beach
6: at Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan
8: aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers and aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi, this is Salman Khan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
16: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए, क्योंकि फ्राइडे है भाई। झूम कर मजे से अपनी फरमाइशों को कीजिए, क्योंकि आज के दिन जो गाने आपका सुनने का मन करेगा, मुझे पता है वो कैसे होंगे। वो तूफानी होंगे, वो अतरंगी होंगे और वो इतने मजेदार होंगे कि बैठे बैठे कोई डांस कर दे। तो जल्दी से अपने गानों को लेकर आ जाइए, अपनी फरमाइशों को लेकर आ जाइए। अपनी फरमाइशों के साथ अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं गाना, तो वो भी लेकर आ जाइए। वी आर गोना डू दैट फॉर यू। सो ऑल यू नीड टू डू इज डायल अ नंबर एंड द नंबर इज +91828887171। आई रिपीट, +91828887171। तो बस फिर जल्दी से फोन उड़ा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

क्या बात है, क्या बात है, तेरे बिन दिल नहीं हो लगता। एंड यू नो व्हाट, दैट्स माय फीलिंग फॉर यू। जी हाँ, मतलब जब मैं आपसे दूर होती हूँ ना, जब मैं प्रोग्राम नहीं कर रही होती हूँ, तो मुझे भी यही फीलिंग आती है कि तेरे बिन दिल नहीं हो लगता। मतलब आपके बिना दिल मेरा भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर अब जरा टॉम हॉलैंड को ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कर लेते हैं। आप लोग बोलोगे कॉन्ग्रेचुलेशन होता है या कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है निवेश शर्मा, ये ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है? वेल, ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि वो तीसरे हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर बनने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और उनकी जो अर्निंग्स है मूवीज की, वो लिटरली 13.6 बिलियन डॉलर्स को सरपास करने वाली है। कैन यू इमेजिन अ एक्टर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ मूवीज जो कि इतनी ज्यादा कमाई कर चुकी है? जी हाँ। एंड यू नो व्हाट, इस लिस्ट में जो और लोग हैं ना, वो इनसे काफी बड़े हैं। जी हाँ, फिर चाहे जो सल्दाना हो, फिर चाहे स्कारलेट जॉनसन हो, फिर चाहे रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, फिर चाहे सैमुअल एल जैक्सन हो, ये सब के सब उनसे बहुत बड़े हैं। मतलब 30 साल के हैं ऑलमोस्ट जो हैं स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड, और वो इतने यंग हैं लेकिन वो ऑलरेडी इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। सो अगर सब सही रहा तो वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, और उनसे ऊपर सिर्फ स्कारलेट जोहानसन जो कि दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं, और उनसे ऊपर है जो सल्दाना, जी हाँ, जो कि लिटरली मार्वल मूवीज की भी मेंबर हैं, और साथ में वो मेंबर तो हैं ही ऑफ कोर्स अवतार सीरीज की। मतलब अवतार सीरीज ने उन्होंने वैसे ही छक्के जो है वो लगा दिए हैं, और यहाँ पर वो नंबर वन बनी हुई है। लेकिन अगेन, कोई मार्वल मूवी फिर से आएगी जो कि डूम्सडे होने वाली है, उसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो उनको काफी पीछे छोड़ सकते हैं, और उसमें जितने भी और एक्टर्स होने वाले हैं वो भी इस लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं। So, जोई सल्दाना जो कि इस वक्त नंबर वन बनी हुई है, और स्कारलेट जोहानसन जो कि इस वक्त नंबर टू बनी हुई है, वो नीचे आ सकती हैं, क्योंकि दिसंबर में डूम्सडे आ रही है, और डूम्सडे रीराइट करेगी हिस्ट्री को, क्योंकि मार्वल की ये मूवी के लिए जितने लोग क्रेजी हुए। एंड गेस व्हाट, अभी 18th of December को मूवी रिलीज होगी, लेकिन उसकी प्री बुकिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी है। मतलब आप अभी से अपने टिकट्स को बुक कर सकते हो। सो या, सबसे पहले तो टॉम हॉलैंड को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब वो इस खिताब को हासिल कर लेंगे हम उन्हें फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाले हैं। लेकिन टॉम हॉलैंड, आई मीन दैट्स अ ग्रेट फीट, आई वुड से। 30 साल के हुए भी नहीं हो पूरी तरह, और ऑलरेडी इतना बड़ा मुकाम, मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, वाह भाई वाह। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है, तो रेडी रहिए उसके लिए।

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तोड़े को डाल रहे हैं।
1: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
2: Saturday 15th August 6:30 PM.
0: मिलते हैं जी Brisbane बीच।
2: At Brisbane Central Auditorium Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
7: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
8: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
7: अरे वाह, इनका पता बताना।
8: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
9: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
10: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
9: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
10: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
9: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
10: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
11: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
12: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। दोस्तों अब जरा AI के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि AI इज द मोमेंट, AI इज द ट्रेंड एंड AI राइट नाउ इज एवरीथिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल। सो या लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सो AI ने इतने सारे लोगों को परेशान करके रखा है, AI ने बहुत सारे लोगों को रिप्लेस भी कर दिया है। वेल, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता है, AI उन ह्यूमंस को रिप्लेस करता है जिनको AI अच्छे से चलाना नहीं आता है। सो जो AI को यूज करके अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और टॉप ऑफ द गेम नहीं है, उनको AI चलाने वाले humans जो हैं, वो दूसरे humans को replace कर सकते हैं. But yeah, exactly AI humans को replace नहीं कर सकता. We have been talking about it. But यहाँ पर AI ने literally बहुत सारी jobs को जो है वो खा लिया. White collar workers के पीछे तो AI पड़ा ही हुआ है, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल वर्कर्स की तरफ भी पड़ा हुआ है, के पीछे भी पड़ा हुआ है. आप लोग बोलोगे स्पिरिचुअल मतलब एस्ट्रोलॉजी करता है AI. मोंक बन जाता है AI. जी हाँ, रोबोट जो है वो मोंक बन गए हैं. AI जो है अब आपको पंडितगिरी भी करके दिखा रहा है, सब कुछ करके दिखा रहा है. लेकिन अब कोरिया के जो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स हैं, जो कि बेचारे इतने सालों से, सदियों से जो है वो अपने टैलेंट के बेस पर जो है अपनी स्पिरिचुअल दृष्टिकोण की वजह से जो है वो कमाई करके खा रहे थे, अब उनकी कमाई पर भी जो है वो ठप्पा लगने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली AI वो भी कर रहा है. सो पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स, दे आर गोइंग फॉर AI. उनको लग रहा है कि ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स जो बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीज जो है वो AI बोल रहा है. उनको AI पे विश्वास है, ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स पर नहीं है. जी हाँ. और अब आप ये सोचिए कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब पे तो AI अपनी छाप छोड़ ही रहा है, मतलब उनको तो धकेल ही रहा है इधर उधर, लेकिन यहाँ पर ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स भी अब इसकी चपेट से पीछे नहीं रह पाए. जी हाँ, अब यहाँ पर AI जो है वो फॉर्चून भी आपको बताएगा, वो भविष्यवाणियां करके आपको दिखाएगा और आपको बताएगा कि बेटा तुम्हारे साथ ये होने वाला है जिंदगी में. जी हाँ, बट अगेन कोई इंसान नहीं बोलेगा, ये AI बोलेगा. सो कोरिया के ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स जो है वो बेचारे बड़ी परेशानी में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ. हमें ऐसा लगता था कि कोई भी जा सकता है, किसी की भी नौकरी जा सकती है, किसी के भी काम धंधा बंद हो सकता है, बट हमारा कभी नहीं होगा. नाउ लुक एट दिस सिचुएशन, ये कहां से आया है ये AI, इसको वहीं भेजो जहां से ये आया है. लेकिन आई डोंट नो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर्स ने अपना फॉर्चून देखा था या नहीं देखा था, मतलब वो लोगों का देख रहे थे, खुद का भी देख लेते कि उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होने वाला है. नहीं तो AI को आने ही नहीं देते. आई मीन दे कुड सी द फ्यूचर, राइट? सो उन्होंने AI का आगमन क्यों नहीं देखा? चलिए सोचिए इसके बारे में और बताइएगा हमें जरूर. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है. ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से. गाने का नाम है कोई ना और ये भूल चूक माफ मूवी का गाना है. प्यारी सी क्यूट सी मूवी है ये, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए. और इसी के साथ थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए. ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए. ये रहा आपका गाना.

जी दोस्तों, अर्ष के साथ सैटरडे यानी कल का प्लान क्या है आपका? अगर प्लान नहीं है तो प्लान बना लीजिए, क्योंकि हरभजन मान, जी हाँ, द लेजेंडरी हरभजन मान आ रहे हैं आपके शहर ब्रिस्बेन में, जी हाँ, ब्रिस्बेन ऑडिटोरियम सेंटर में, और वो आपको एंटरटेन करने वाले हैं खतरनाक तरीके से, क्योंकि जब वो गाते हैं, जब वो वाइब बनाते हैं, तो आप सब झूमने के लिए तैयार हो जाते हो, ये तो बात पक्की है। जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि हरभजन मान आ रहे हैं 15th of August सैटरडे को, यानी कि कल, ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में, और सतरंगी पींगा टूर उनका चल रहा है, उसी के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने टिकट्स बुक नहीं किए तो कर लीजिए, लेकिन इन केस आप चाह रहे हैं कि कहीं से आपको एक फ्री टिकट मिल जाए, तो उसका मौका है आपके पास। जी हाँ, और वो मौका कैसे है और कैसे मिलेगा आपको, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कैसे मिलेगी वो फ्री टिकट। अभी हम आपको एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि मैं कल भी पूछ रही थी, आज भी पूछूंगी, और इस प्रोग्राम के एंड तक हम उसको कह देंगे, बता देंगे, जो भी हमारा लिसनर ये टिकट जीतने वाला है, मतलब एक फ्री टिकट आप जीत सकते हो हरभजन मान के शो की, जो कि कल हो रहा है ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम में। जी हाँ, सो क्वेश्चन ये है कि हरभजन मान की वो कौन सी पहली मूवी है, जी हाँ, कौन सी पहली मूवी है जो कि कमर्शियली जो है रिलीज की गई थी, एंड व्हेन आई से कमर्शियली आई मीन वर्ल्ड वाइड, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड। आप सबको पता है कि ही इज अ पंजाबी सुपरस्टार, सो उनकी वो कौन सी मूवी थी, पहली मूवी जिसको वर्ल्ड वाइड कमर्शियली रिलीज किया गया था। अगर आप इसका सही आंसर देते हो तो ये फ्री टिकट आप अपने नाम कर सकते हो, और आप उस जबरदस्त सी वाइब का हिस्सा भी बन सकते हो। तो जल्दी से फोन उठाइए और भेज दीजिए हमें आंसर इस क्वेश्चन का, मुझे रहेगा इंतजार, और फिर हम आपको बताएंगे कि कौन जीता ये। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: me? May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज एनीविया के साथ। दोस्तों कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और वहां पर मेरी नजर यानी कि मेरी आंखों के सामने एक और मीम आता है, और वो मीम से ज्यादा एक ऐसा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जो है वो कोई साइंटिस्ट ही सोच सकता है। जी हाँ, आई डोंट नो किसी साइंटिस्ट ने सोचा है, किसी ह्यूमन के खुराफात है, बट किसी नॉर्मल इंसान की खुराफात है। बट द थिंग इज कि उसमें लिखा हुआ था कि व्हेन ह्यूमंस फॉल इन लव दे फील बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक। जी हाँ, ये आपने सबने सुना होगा कि हमें तितलियां जो है वो महसूस हो रही है, बटरफ्लाइज जो है वो हमें अपने स्टमक में फील हो रही है। ऐसा कहते हैं लोग जब वो प्यार में पड़ने लगते हैं, जब उन्हें कोई अच्छा लगता है, जब वो किसी से अट्रैक्टिव फील करते हैं, तो वो यही कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही था, मतलब उस मीम में यही था कि व्हेन ह्यूमंस फॉल इन लव दे फील बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक। सो व्हेन बटरफ्लाइज फॉल इन लव, डू दे फील ह्यूमंस इन देयर स्टमक? एंड आई वाज लाइक या, आई मीन दैट्स अ लाइक वैलिड क्वेश्चन कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तो उनको बटरफ्लाइज फील होती है उनके स्टमक में, लेकिन जब बटरफ्लाइज प्यार में पड़ती होंगी तो उनको क्या फील होता होगा? उनको क्या ह्यूमंस फील होते होंगे क्या उनके स्टमक में? क्योंकि हमें बटरफ्लाइज फील होती हैं, तो बटरफ्लाइज को तो बटरफ्लाइज फील नहीं हो सकती जब वो प्यार में पड़ेंगी तब उनके पेट में। सो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि क्या उनके पेट में उन्हें ह्यूमंस फील होते हैं? भाई ह्यूमंस को बटरफ्लाइज फील होती हैं, तो बटरफ्लाइज को भी तो ह्यूमंस फील हो सकते हैं, राइट? बट इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जरूर मुझे बताइएगा। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा कहाँ से लाती हो तुम ये सब? वेल मैं कह रही हूँ ना, आजकल सारी क्रिएटिविटी म्यूजियम्स में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन आपको नचाने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, रुख करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत होगी किससे, गेस कीजिए। जी हाँ, जापान से। पूर्वी जापान में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान, 4 लोगों की मौत, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। जी हाँ, जापान के चीबा प्रांत में रिकॉर्ड बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों यात्री टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर रात भर फंसे रहे। राजधानी टोक्यो के पास स्थित चीबा में गुरुवार दोपहर से हर घंटे 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये अगस्त में होने वाले औसत बारिश से करीब 3 गुना ज्यादा है और देश में अब तक दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश है। मूसलाधार बारिश के कारण ट्रेन, बस और टैक्सी सेवाएं ठप हो गई है। वहीं चीबा में 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली भी गुल हो गई। हालात को देखते हुए राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ।

से के साथ खबरों की बात हो रही है और यहाँ पर सिंधु जल समझौते पर बोले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, भारत ने राह नहीं बदली तो सीधे जवाब देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो उसे सीधे जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में गुरुवार को यादगार ए फतेह के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा तौर पर निलंबित करने किए जाने पर टिप्पणी की। दरअसल अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए जवाबी कदम के तौर पर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। अपने संबोधन में शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के साथ साथ सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुए समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को सभी तरह के संघर्षों से मुक्त देखना चाहता है और नए विवादों को रोकने की कोशिश करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच जिम्मेदार मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने मध्य पूर्व में शांति के लिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर के ऐतिहासिक किरदार की तारीफ की। साथ ही सऊदी अरब और तुर्की के साथ समझौते को लेकर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार के प्रयासों की भी सराहना की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। बेसिकली सारे बेवड़े लोगों का शुक्रिया अदा ये इंसान यहाँ पर कर रहा है। सो लेट्स जस्ट आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ और ये गाना जो है वो भी जबरदस्त है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438 या mobile 0415-952-660, 0415-952-660।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। वहीं उत्तराखंड में सुरंग में बचाव अभियान जारी है। जी हाँ, भारत से खबर जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपल कोटी स्थित THDC के निर्माणधीन सुरंग में पानी और मलबा भरने के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, NDRF के मुताबिक अभी तक 4 शव बाहर निकाले गए हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए हैं। पीपल कोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निर्माणधीन सुरंग में गुरुवार शाम मलबा और पानी घुस गया था। NDRF की टीम कमांडर अमृत लाल मीना ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू करने के वक्त सुरंग में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था और किनारों से भी लगातार पानी रिस रहा था। इसके बाद पानी का स्तर और बढ़ गया। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ के जवानों ने विशेष उपकरणों की मदद से अब तक पानी से 4 शव बाहर निकाल लिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जब तक सुरंग में फंसे सभी लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक अभियान चलता ही रहेगा।

इसी के साथ अब जरा चलते हैं फ्राइडे का वो काम करने जो कि फ्राइडे को ही होता है। वेल फ्राइडे को मूवीज रिलीज होती हैं, तो ऑफ कोर्स हम आपको मूवीज के बारे में बताने यहाँ पर आ गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो दो मूवीज इस हफ्ते लगी हैं उनके बारे में मैं आपको बताने आ गई हूँ। पहली है बटवारा 1947। जी हाँ, बटवारा 1947। आप लोग बोलोगे हैं बटवारा 1947, वेल अगर आपको नहीं पता है तो आज है 14 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त है कल, और 14 अगस्त और 15 अगस्त को ही जो है वो मेन काम हुआ था। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, उसका जो मेन जो है शुरुआत हुई थी वो 1947 14 अगस्त को ही हुई थी। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को जो है उन्हें छोड़ना पड़ा था, उनको दूसरी जगह जाकर बसना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस डे। जी हाँ, सो कल है 15 अगस्त, ऑफकोर्स कल इंडिपेंडेंस डे है भारत का, और वो भी एक बड़ा दिन है। बट यहाँ पर ये जो मूवी है इसका नाम है बंटवारा 1947, एंड गेस व्हाट, इसमें जो एक्टर है वो है सनी देओल। जी हाँ, सनी देओल, जो कि लिटरली गदर मूवी के लिए फेमस है, एंड ये उनकी अरीना है। जी हाँ, मतलब ऐसी मूवीज में वो जब भी काम करते हैं बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इस मूवी का ट्रेलर तो जरूर चेकआउट कीजिए, और फिर शायद आपको ये मूवी देखने का मन कर जाएगा, बिकॉज इस मूवी से रिलेट बहुत सारे लोग कर पाएंगे। जी हाँ, सो बंटवारा 1947 जो है वो वैसी ही मूवी है जैसी आपको लग रही है। इट्स एक्शन ड्रामा एंड पीरियड मूवी अबाउट द टाइम व्हेन जो है इंडिपेंडेंस मिली थी और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हेंस द नेम बंटवारा। जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी जो कि इमरान हाशमी की है, जो कि अगेन रिलीज हो रही है, और इसका नाम है आवारापन 2। जी हाँ, इमरान हाशमी वापस आ गए हैं अपनी मूवी के साथ। पहली आवारापन थी, अब आवारापन 2। इसमें उनके साथ दिशा पाटनी नजर आने वाली है और शबाना आजमी भी आपको नजर आएंगी, और ये है एक्शन क्राइम रोमांटिक मूवी जो कि इमरान हाशमी का अरीना है, आई वुड से। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ ये दो मूवीज जो है वो रिलीज हो गई हैं इसी हफ्ते। और एक और मूवी जो आप देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ मजे से मस्ती से, वो है धमाल 4। इट्स अ फन मूवी, इट्स अ एडवेंचर मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी, और इसमें आपको मिलने वाले हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, और वो जबरदस्त से लोग जो कि इसमें अच्छे से काम करते हुए आपको हमेशा हमेशा जो है वो नजर आए हैं। जी हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें अजय देवगन ने एंट्री भी मारी है, और ये मूवी जो है, ये पार्ट जो है वो चौथा पार्ट है धमाल मूवी का। धमाल मूवी जो है वो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स के साथ जो है वो एंट्री करती है हमेशा, क्योंकि बहुत पहले इसका पहला पार्ट आया था अर्ली 2000s में, और उसके बाद से ये हमारी जिंदगी का हिस्सा जो है वो बन गई। और कुछ कॉमेडी मूवीज जो है वो हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इन मूवीज को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी मूवीज है जो आप देख सकते हो, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट, लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और जबरदस्त सा गाना।

दोस्तों, तो इसी के साथ आपको बताया जा रहा है कौन सी मूवीज आप इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख पाओगे। जैसे मैंने आपको मूवीज के बारे में बता दिया है, बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात हो गई है, यानी कि इंडियन मूवीज के बारे में बात हो गई है। अब जरा चलते हैं हॉलीवुड की तरफ का रुख करते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स द ओडिसी, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, जो कि 1300 मिलियन डॉलर जो है, यानी कि 1300 मिलियन डॉलर जो है वो कमा चुकी है फिलहाल के लिए। उसमें और भी आगे बढ़त जो है वो हो रही है। इसके अलावा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो भी लगी हुई है, इसमें आप टॉम हॉलैंड को देख सकते हो और अगेन स्पाइडरमैन एरिना में एंट्री मार सकते हो। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वो लगी हुई है, एंड गेस व्हाट, ये 2 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट कमा चुकी है। और इस वीकेंड के खत्म होते होते 2 बिलियन डॉलर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके आगे जो है वो मूवी चली जाएगी। मतलब 2 हफ्ते हुए हैं इस मूवी को रिलीज हुए, लेकिन 2 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट कमा लेना इज अ फीट। जैसे मैंने बताया था कि कैसे टॉम हॉलैंड, यानी कि जो स्पाइडरमैन फेम एक्टर हैं, वो लिटरली हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हैं, और हमने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। गेस व्हाट, यही तो हो रहा है उनके साथ। एंड वो सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नहीं है, वो द ओडिसी में भी है। तो 2 बड़ी मूवीज जो है जो उनकी थिएटर में लगी हुई है और वो पूरी तरह से रूल कर रहे हैं थिएटर्स को, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा एक और मूवी जो आप देख सकते हो जो कि एन हाथवे की है। जी हाँ, अगर आप एन हाथवे के फैन हो तो द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये एक्शन मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर है। जी हाँ, और ये एन हाथवे के साथ साथ इवन मैकग्रोगर भी आपको इसमें नजर आने वाले, एक फैमिली, जी हाँ, एक फैमिली जो कि रियलाइज करती है कि वो ऑक स्ट्रीट में जहां पर वो रहते हैं, उनकी ऑक स्ट्रीट जो है वो कहीं और पहुंच गई है, और अब उन सबको इकट्ठे रहना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अजीबो गरीब चीजें हैं। एंड दैट इज द रीजन एक्शन मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर जो है इसके जॉनर्स हैं। सो ये मूवी आप देख सकते हैं, जो कि अगेन इसी हफ्ते लगी है, और बड़े भारी भरकम प्रमोशन जो है वो एन हाथवे इसकी कर रही है। पहले तो ओडिसी के लिए कर रही थी, अब इसके लिए कर रही है। कुछ एक्टर्स के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, लाइक जेंडेया के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, एन हाथवे के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और साथ में टॉम हॉलैंड के लिए भी ये साल बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सो जैसे मैंने कहा कि हिंदी मूवीज, इंडियन मूवीज के साथ स्पाइडरमैन, द ओडिसी एंड द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट, ये सब मूवीज आप देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लग गई। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: Aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi, one of the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Britswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
7: To everyone tuning into Radio Britswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Britswani.
9: To everyone tuning into Radio Britswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Britswani.
11: Are you ready to stop renting and thinking about owning one, or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Britswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
12: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
13: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
14: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों यहाँ पर अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो कि है ओल्ड इज गोल्ड। यानी कि ये सेगमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने आपके लिए प्ले करते हैं। आई होप आप अपने पुराने गानों के साथ तैयार हो, अपनी फरमाइशों के साथ तैयार हो, क्योंकि वही आपको अब यहाँ पर मिलने वाला है, और वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ। जी हाँ, सो सर पुराने गाने नहीं होंगे, पुराने किस्से और पुरानी बातें भी होंगी। तैयार रहिए और अपनी फरमाइशों को भी तैयार रखिए। इसी के साथ जो गाना मैं आपको सबसे पहले सुनाने वाली हूँ इस सेगमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा खास है। गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार अमर। अब आज फ्राइडे है, सो ऑफकोर्स मौसम भी जो है वो बहुत ही बढ़िया है, तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे गाने के साथ शुरुआत होनी चाहिए जो कल्ट फेवरेट हो, जो हम सबको पसंद आता हो और जो हम सबको चांद की याद करवाए। जी हाँ, सो ऑफकोर्स ये गाना आप सबके लिए।

हाँ दोस्तों, तो शुरुआत तो बहुत ही खूबसूरत हुई है और मैं इस खूबसूरत शुरुआत के अलावा और कोई कैसी भी शुरुआत जो है वो सोच नहीं सकती। मतलब दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट यू नो स्टार्टिंग फॉर एनी सेगमेंट। एंड ये खूबसूरत सा गाना हमने आपके लिए प्ले किया यहाँ पर। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इंटरव्यू के दौरान जब ही मैन ऑफ बॉलीवुड से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग इस एरा का सबसे जबरदस्त एक्टर कौन सा है, जी हाँ, और ये कुछ साल पहले का इंटरव्यू है उनका, मतलब आप कह सकते हो कि ये अर्ली 2000s का उनका इंटरव्यू था जिसमें उनसे एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा था। तो बहुत ही अच्छे से सामने से ही मैन ऑफ बॉलीवुड यानी कि धर्मेंद्र कहते हैं कि देखिए इस एरा का तो एक ही एक्टर है जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जबरदस्त है और मुझे लगता है कि उसने ग्रेविटी को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब ग्रेविटी भी उसके सामने फीकी पड़ गई है, वो इतना ऊपर निकल गया है और वो है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, मतलब क्या कहूँ मैं उसके लिए। एक वक्त था जब उसकी पतंग की डोर जो है हम जो है उसकी उड़ाया करते थे, उसे पतंग की तरह हम उसे उड़ाया करते थे और हम चाहते थे कि वो उड़े, बहुत उड़े, लेकिन अब तो वो इतना उड़ रहा है कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑफकोर्स ये बोलने के पीछे रीजन ये भी था कि शोले जैसी बहुत बड़ी मूवी में धर्मेंद्र ने जो है वो कहा था सलीम जावेद को और उनको रमेश सिप्पी को कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा के बजाय अमिताभ बच्चन को लेना चाहिए। सो ऑफकोर्स धर्मेंद्र जो है वो हमेशा से लुक आफ्टर करते रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए। तो जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि ओ माय गॉड, तो कभी आपको जेलसी नहीं हुई, तो सामने से धर्मेंद्र कहते हैं कि जेलसी कैसे होगी, छोटा भाई है मेरा और जितनी तरक्की करता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील होती है, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि अच्छा इस सदी के महानायक के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन पिछली सदी का कौन सा महानायक था, मतलब कौन आपके अकॉर्डिंग, कहते दिलीप साहब से ऊपर कोई नहीं। और दिलीप साहब के लिए जो उनकी एडमायरेशन थी उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब लिटरली दिलीप साहब को वो अपना खुदा मानते थे, ये धर्मेंद्र जी ने सामने सामने बोला है। जी हाँ, तो धर्मेंद्र जी के हिसाब से अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब दोनों ही ऐसे सदी के महानायक रहे हैं कि जिन्होंने बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया और इतना पीछे छोड़ दिया कि शायद वो कोशिश भी करते तो भी उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां ये दोनों पहुंचे हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि लिखे जो खत तुझे यानी कि मेरे फेवरेट सॉन्ग के बारे में है, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, तो अगर मेरी तरह आपका भी फेवरेट गाना है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, जी हाँ मैं गाऊंगी नहीं, डोंट वरी, मुझे पता है पहले डर जाते हो क्योंकि फिर से गाना शुरू कर दिया। सो अगर आपका भी है ये फेवरेट गाना, तो ये गाना बना कैसे और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी शुरू होती है नीरज से, जी हाँ नीरज जो कि इसके लिरिसिस्ट थे, मतलब जो लेखक थे जिन्होंने इस गाने को लिखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि नीरज ने इस पिक्चर के लिए यानी कि कन्यादान के लिए ये गाना लिखा ही नहीं था, गाना कोई और लिखा गया था। जी हाँ, अब वो गाना जो है वो नीरज को भी पसंद था और साथ में प्रोड्यूसर को भी पसंद था, लेकिन वो पसंद नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर को, और वो थे शंकर जयकिशन। जी हाँ, शंकर जयकिशन बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, और जब उन्होंने उस गाने के बोल सुने तो उन्हें पसंद नहीं आया। अब शंकर जयकिशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत धुन बना चुके थे और उन्हें चाहिए थे वो लिरिक्स जो उनकी धुन के साथ जस्टिस करते, लेकिन यहाँ पर नीरज भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बोल जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि यही बोल इसी धुन के साथ जाने चाहिए। इनफैक्ट ना सिर्फ नीरज बल्कि प्रोड्यूसर को भी यही लगा कि हाँ ठीक है, मुझे भी गाना पसंद है तो इसमें कोई दोराय नहीं है, मतलब हमें इसी गाने को रखना चाहिए, मतलब इन्हीं बोल को रखना चाहिए। लेकिन शंकर जयकिशन अड़ गए, वो कहते हैं कि अगर ये गाना ठीक नहीं हुआ तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा ही नहीं इस पिक्चर के लिए। अब ऐसे में प्रोड्यूसर भी डर गए और साथ में लिरिसिस्ट जो थे वो भी थोड़ा सा रुक गए, थम गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। गुस्से में आके उन्होंने अपने जो बोल जिस कागज में उन्होंने लिखे थे वही फाड़ दिया। अब जब ओरिजिनल गाने जहां पे लिखा हुआ था वो कागज ही फट गया, तो उसके बाद सब सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। तो सामने से नीरज ने कहा कि ठीक है मैं आपको एक और गाना लिख कर देता हूँ और सुबह तक ही लिख कर दूंगा, लेकिन यहां पर फिर उसके बाद मैं जो भी मांगूंगा आपको वो देना पड़ेगा। प्रोड्यूसर वैसे ही जो है वो डर गए थे, उन्हें लग रहा था कि गाना रहा ही नहीं, अब क्या होगा। लेकिन जब नीरज ने कहा कि सुबह सुबह तक उन्हें गाना मिल जाएगा और गाना रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है जो भी चाहिए होगा हम तुम्हें देंगे, शर्त लग रही है तुम अगर सुबह तक हमें गाना कोई अच्छा सा लिख कर दोगे जो कि शंकर जयकिशन कहेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छे से जा रहा है उनकी धुन के साथ, तो तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। फिर क्या था, नीरज घर गए और बड़े ही अच्छे से बोल उन्होंने लिखे, और वो अगले दिन सुबह जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने बोल दिखाए। अब जब बोल उन्होंने सुने यानी कि शंकर जयकिशन ने और प्रोड्यूसर ने दोनों ने, तो वो दोनों इतने ज्यादा मेस्मराइज हो गए, उन्हें लगा कि वाह क्या खूबसूरत बोल है और इस धुन के साथ तो ये इतना बढ़िया जा रहे हैं, क्या ही बात है। फिर अब भाई शर्त की बारी, क्योंकि शर्त जो है वो जीत चुके थे, नीरज ने जो है वो एक दिन में बोल लिख के दे दिए थे और वो पास भी हो गए थे। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि ठीक है भैया नीरज, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्त पूरी कर दी है, अब तुम बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। उन्होंने कहा कि आप देंगे ना जो मैं मांगूंगा, तो प्रोड्यूसर ने कहा हाँ भाई मैंने तुम्हें जुबान दी है, ऑफ कोर्स दूंगा, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो नीरज ने प्रोड्यूसर की ही चमचमाती हुई गाड़ी की तरफ इशारा कहा कि इसकी चाबी दे दीजिए बस आप, यही चाहिए मुझे। फिर क्या था, प्रोड्यूसर ने भी अपनी बात जो है वो पूरी की, अपने बोल जो है अपनी जो शब्द जो है उनको रिस्पेक्ट किया और साथ में उनको पूरा किया रिस्पेक्टफुली, और उन्होंने वो चमचमाती हुई गाड़ी जो कि उनकी थी उसकी चाबियां लिरिसिस्ट नीरज को दे दी, क्योंकि वो शर्त जीत चुके थे। बस फिर क्या है, यही बोल थे वो, यही गाना था वो जिसने लिरिसिस्ट नीरज को उनकी वो चमचमाती गाड़ी जितवाई। जी हाँ, और आपको ये गाना सुनने को मिला। मायने आप खुद सोच लीजिए कि अगर वो पहले वाले बोल पास हो जाते तो लिखे जो खत तुझे तो हमें मिलता ही नहीं कभी भी, अगर शंकर जयकिशन नहीं अड़ते तो हमें ये गाना कभी सुनने को नहीं मिलता, और प्रोड्यूसर अगर अपनी शर्त पूरी नहीं करते तो भी हमें ये गाना नहीं मिलता। सुनती है इसको और फिर करते और बात है।

क्या कहूँ मैं इस गाने के बारे में। अब तो मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है कि ये गाना मुझे कितना ज्यादा प्यारा है। और ये आखिरी गाना नहीं है, इसके बाद आखिरी गाना आने वाला है जो मैं आपके लिए प्ले करूंगी। बट डेफिनेटली इस गाने से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता, डेफिनेटली। और वो मेमोरी भी इतनी खूबसूरत है जब मैंने इसे सुना था 5 साल की उम्र में, इमेजिन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप आज के लिए हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हम मिलेंगे अब आपसे कल, लेकिन डिफरेंट प्रोग्राम में। प्रोग्राम होगा Top 10 Hot 10, थोड़ी देर का मिलना होगा लेकिन मिलना होगा जरूर। और वीकेंड पे हम आपको एंटरटेन करने आएंगे, यानी कि कल, और उसके बाद मिलना होगा इवनिंग वाइब में मंडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल एंजॉय करना है, मजे करने हैं, फन करना है, और जो भी आपको खुशी देती है चीज वो करना है। जी हाँ, बिकॉज वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए और मजे से। एंड व्हेन आई से पीना चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन पीना, गलत मत लीजिएगा मेरी बात को। जी हाँ, मैं पानी के बारे में ही बात कर रही थी। जी हाँ, सो दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फैगन ने बनाया नया रिकॉर्ड। ब्रिस्बेन लायंस के हेड कोच क्रिस फैगन क्लब के इतिहास में सबसे ज्यादा मैचों में कोचिंग करने वाले कोच बन गए हैं। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग ग्राउंड पर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इसी के साथ ब्रिस्बेन में बड़ी पुलिस कार्रवाई, अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ब्रिस्बेन और सिडनी में एक साथ रेड मारकर अवैध तंबाकू और वेप्स की स्मगलिंग करने वाले एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। वहीं अल्बानी क्रीक इलाके में नाबालिगों के बीच झड़प। सेंट्रल ब्रिस्बेन में 15 किलोमीटर दूर अल्बानी क्रीक में दो टीनेजर्स के बीच हुई आपसी झड़प में एक लड़का घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया है। इसके साथ 2032 ओलंपिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्लम्बर और कारीगरों की कमी। ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक्स खेलों के स्टेडियम और प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से चलने के कारण आम घरों के मरम्मत कार्यों के लिए कारीगरों का वेटिंग टाइम काफी बढ़ गया है। वहीं क्वींसलैंड पुलिस ने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन नियमों को किया सख्त। जी हां, ब्रिस्बेन के दक्षिणी इलाके में हुई एक घटना के बाद क्वींसलैंड पुलिस ने घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में प्रोटेक्शन ऑर्डर और पुलिस एक्शन के नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। इसी के साथ गैबा स्टेडियम में ब्रिस्बेन लायंस और गोल्ड कोस्ट का मैच। ब्रिस्बेन के मशहूर गैबा स्टेडियम में इस वीकेंड ब्रिस्बेन लायंस और गोल्ड कोस्ट के बीच धमाकेदार AFL मैच होने जा रहा है, जिसे लेकर लोकल फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां और दिल्ली मेट्रो का खास प्लान। कल 15 अगस्त के जश्न के लिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर होने वाले प्रोग्राम में आने वाले लोगों और आम जनता की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपने सर्विस सुबह 4 बजे से ही शुरू करने का फैसला किया है। वहीं लोन लेने वालों के लिए RBI का नया प्रस्ताव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद लोन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना और फ्लोटिंग रेट लोन वाले ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज से राहत देना है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक टनल के पास अचानक मलबा और पानी आने से बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ मध्य प्रदेश में नकली पनीर की बिक्री पर बैन। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एनालॉग यानी मिलावटी या केमिकल से बने पनीर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बदलाव। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या इस बार थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। वहीं जियो फाइनेंस और बैंक ऑफ अमेरिका की बड़ी डील। बिजनेस वर्ल्ड से बड़ी खबर है, जियो फाइनेंशियल सर्विस और बैंक ऑफ अमेरिका के बीच 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील फाइनल हुई है। इससे देश के क्रेडिट और डिजिटल बैंकिंग सेक्टरों पर एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं इसी के साथ अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी। फारस की खाड़ी के अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होती ये रूट ब्लॉक ही रहेगा। वहीं व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का इस्तीफा। वॉशिंगटन से खबर है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार को वक्त देना चाहती हैं। वहीं कनाडा के जंगलों में भीषण आग, इमरजेंसी घोषित। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में जंगलों की आग बेहद तेजी से फैल रही है। हालात बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी है। वहीं जर्मनी में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप। जर्मनी के बवेरिया में रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध विस्फोटक सामग्री पाई गई है। खबर मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स नेटवर्क की अहम बैठक। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इस वीकेंड ग्लोबल लीडर नेटवर्क की बड़ी बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस मीटिंग में महिलाओं और बच्चों की हेल्थ और बेहतर मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा होगी। वहीं जापान और रूस के बीच कुरील द्वीप को लेकर विवाद बढ़ा। कुरील द्वीप समूह के दौरे को लेकर जापान ने रूस के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया है और जापान का कहना है कि ये इलाका ऐतिहासिक रूप से उसका है, जबकि रूस ने इसे अपना अटूट हिस्सा करार दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले ब्राजील के खिलाफ फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारी। भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए इस साल ब्राजील के खिलाफ होने वाले फ्रेंडली मैच पर अपना पूरा फोकस बना लिया है। वहीं डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिमटी। जी हां, बांग्लादेश के खिलाड़ी डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में महज 198 रनों पर सिमट गई। वहीं रोहित शर्मा के फ्यूचर पर मैथ्यू हेडन का बयान। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के खेलने को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने कहा है कि संन्यास या खेलने का फैसला पूरी तरह रोहित की अपनी फिटनेस और एनर्जी पर निर्भर करता है। वहीं वर्ल्ड पैडल लीग में रोमांचक मुकाबले जारी। मुंबई में चल रही वर्ल्ड पैडल लीग यानी कि WPL के दूसरे दिन लायंस और पैंथर्स की टीमों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां लायंस ने आखिरी लम्हों में जीत दर्ज की। नहीं, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर्स का जलवा। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय ग्रैंड मास्टर्स अर्जुन एरिगेसी ने चेस प्लेऑफ में अपनी जगह मजबूत कर ली है। वहीं लियोनेल मेसी के भारतीय दौरे की चर्चाएं गरम। केरल में महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के आने की खबरों को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: सत श्री अकाल, मदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थोड़ा प्रथक भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
2: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
3: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
1: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन
3: at Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
4: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di soochna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. Hor jankari layi Fire Ants Queensland ja Fire Ants QLD khojo ja 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। A place to call home, khojo. Queensland Sarkar, Brisbane Valo Adhikarat, authorized by the Queensland Government, Brisbane. Queensland di navi sarkar Brisbane layi vadde kam pure kar rahi hai. Asi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar dete han. Asi hor vi vadde doctor muhaiya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane varge hospitalan vich vadde sudhar lya rahe han. 1600 hor police karmi ate hor sakht kanoon lya rahe han. Sthani school ate khed clubban vich vadde sudhar lya rahe han. ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

0: more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

सत श्रीकाल जी, मैं हां संदेश अलख शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो बरसानी 101.1 एम ते। जबला हो चुके हैं हुण तक दे अहम खबरां दा, तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ते हुए हमले के मामले में हमलावर की पछाण जसपाल सिंह वजो हुई है। घटना तो बाद पुलिस ने उसनू हिरासत में ले लिया, पूछगिछ शुरू की। इस दौरान सोशल मीडिया से एक वीडियो घूम रहा है जिस विच दावा किया जा रहा है कि हमले के दोषी जसपाल सिंह सम्मानित किया जा रहा है। वायरल वीडियो में लोग हमलावर जसपाल सिंह पग बन के सम्मानित कर रहे हैं। इस दौरान सीटियां भी वज रही हैं। वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए ने। हालांकि श्रोमणी अकाली दल ने अजे तक सोशल मीडिया से घूम रहे वीडियो की अधिकारित तौर पर पुष्टि नहीं की है। अकाली दल इस पूरे मामले संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की। इस विच हमले के आले दुआले घटनावां ते वायरल वीडियो बारे स्पष्टीकरण देने की उम्मीद है कि जदों अगली बार कुछ होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। इस दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदा के बयान के आधार पर भी घटना की जांच कर रही है। हमले दौरान सुखबीर बादल की सुरक्षा लई तैनात सुरक्षा गार्ड संतोष हेगड़े भी हमलावर नूं रोकण की कोशिश करते हुए जख्मी हो गए। पूरी घटना की जांच पुलिस वल्लों की जा रही है। उधर दूजे पासे पंजाब कांग्रेस से चल रहे काटो कलेश नूं खत्म करन दीआं कोशिशां लगातार जारी हन, पर अजे तक किसे नूं वी सफलता नहीं मिली। उत्थे राहुल गांधी वल्लों सिद्धे इस मामले ते नजर रखण दी गल कही जा रही है। सूत्रां मुताबिक इस सिलसिले विच राहुल गांधी पंजाब दा दौरा वी कर सकदे हन। सूत्रां मुताबिक राहुल गांधी इस महीने पंजाब दा दौरा कर सकदे ने। श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे नतमस्तक होणगे ते पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगू नाल मुलाकात करनगे। जेकर राहुल गांधी पंजाब दा दौरा करदे हन तां उन्हां दी ये फेरी काफी अहम रहने वाली है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते चरणजीत सिंह दो वक्-वक् धड़े बन जाण दे मुद्दे नूं हल करन लई कांग्रेस हाईकमांड पहलां भी कोशिशां कर चुकी है। बीते दिन पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल नूं इसे लई पंजाब दे दौरे ते भेजा गया सी। इस तों बाद फिर उन्हां अते राजा वड़िंग दी अगवाई विच हर बूथ कांग्रेस मजबूत मुहिम चलाई गई, पर इस मुहिम विच काफी हंगामा होया। इस मुहिम दौरान तकरीबन हर मीटिंग विच समर्थकां वल्लों चन्नी दे हक विच नारे लगाए गए ते राजा वड़िंग दा विरोध कीता गया। इस विचकार भूपेश बघेल नूं विरोध दा सामना करना पिया। कई बार चन्नी अते वड़िंग दे समर्थक आमणो सामणे भी होए। इस सब घटनाक्रम ने हाईकमांड की चिंता वधा दी है। इस विचकारे भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने अपनी टीम नूं खुद फीडबैक लैके रिपोर्ट पेश करने लई कहा है। जिक्रयोग है कि बीते दिन पंजाब कांग्रेस दे कलेश नूं वेखते हुए सीनियर आगू प्रताप सिंह बाजवा ने भी राहुल गांधी नाल मुलाकात की सी। इस तों पहलां उन्हां वल्लों पंजाब दे कांग्रेसी विधायकां नाल मुलाकात की गई सी। इस मुलाकात मगरों भाजपा समेत कांग्रसियां दे 15 विधायकां ने राहुल गांधी नूं मिलण लई चिट्ठी लिखी सी। सारे विधायक कलेश दे मसले नूं जल्द तों जल्द हल करन दी अपील उन्हां वल्लों की जा रही है। उधर यूक्रेन ने रूस की आर्थिकता ते डिफेंस सिस्टम ते एक बार फिर वड्डा हमला किया है। यूक्रेन दे लंबी दूरी दे ड्रोना ने रूस ते बाशकोरतोस्तान इलाके विच स्थित रूसी गैस कंपनी दे प्रमुख गजप्रोम नेफ्तखिम सलावत तेल रिफाइनरी अते पेट्रोकैमिकल कॉम्पलैक्स नूं निशाना बनाया, जिस तों बाद उत्थे भयानक अग लग गई। यह रिफाइनरी यूक्रेन की सरहद तो लगभग 1300 किलोमीटर दूर स्थित सी। यह रूस दियां सब तो वड्डियां रिफाइनरियां विचों एक है, जो सालाना लगभग 10 मिलियन मैट्रिक टन तेल प्रोसैस करती है ते रूसी फौज नूं ईंधन सप्लाई करन विच मदद करती है। इस इलाके विच रूस की सब तो वड्डी ई कामर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज दे एक लॉजिस्टिक गोदाम नूं भी हमले का सामना करना पिया, जिथे फौजी साजो समान अते ड्रोन पार्ट्स आदि रखे जाण दा शक सी। इस तों इलावा रूस दे ओरेनबर्ग खेतर दे गवर्नर ने मन्या है कि यूक्रेनी हमले तो बाद उर्सक रिफाइनरी दे अहम हिस्से तबाह हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां कारण विदेशी मशीनरी ना मिलन करके रिफाइनरी नूं ठीक करन विच 6 महीने तक दा समा लग सकता है। उधर आस्ट्रेलिया विच 16 साल तो घट उम्र के बच्चों लई सोशल मीडिया ते लगाई गई दुनिया की पहली पाबंदी तो बाद फेसबुक ते इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मैटा ने वड्डी कार्रवाई की है। मैटा ने वीरवार नूं दस्सिया है कि उसने 16 साल तो घट उम्र के आस्ट्रेलियाई लोगों के शक्की 7,50,000 तो वध खात्यां नूं हटा दिता है। एक कदम किशोरां दे खात्यां ते दुनिया के पहले बैन मगरों चुकया गया है। नाल ही कंपनी ने संभावित रेगुलेटरी दखलअंदाजी के मद्देनजर होर
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4,62,000 ਸ਼ੱਕੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਤੇ 2,94,000 ਸ਼ੱਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਟਾਏ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,31,000 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਤੇ 1,73,000 ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੈਟਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ 16 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ biswani@biswani.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ 101.9। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी हां तुसी बने होए जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश शलक दे नाल सी बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुके है जी ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असी ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरियां अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो बसवानी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है अपना पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हो तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स अते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर अते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते हैं क्यों तो हुण मैं थोनों इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जान के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा है। सच्ची हुंदा हुंदा दस्सदे उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीज़ा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने, जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पप्पी लैगी सुणो।
1: It's Black Lives.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सनो वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम्हें पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट हैगी है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज़्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म कि होंगी है तो जी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर होंगी है फ्लॉप। फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप होंगी है। तो एवरेज फिल्म कि होंगी है, एवरेज होंगी है फिल्म अपनी लागत क्ड लेंदी हैगी मामूली मुनाफा कमाती हैगी, यानी कि 1 करोड़ बनी हैगी 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज़्यादा का मुनाफा जिमें 1 करोड़ बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जो कमाई कर ले तो वह हिट होंगी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट होंगी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज़्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज़्यादा कमाई करे।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हाँ जी, तो देखो हुण असली कमाई का सच जानते हैं तो लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने तो बजट 80 करोड़ का हैगा है तो फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हाथ विच जो पैसा आउंदा है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैगे ने। फिल्म तद हिट मनी जांदी है जद डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होवे।

0: साडे आए असी बुले ना समाए साडे घर शरीफ ले आया साडे सारे वालों जी आया।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड की गल कर रही हाँ, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित होंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270355. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: घर के।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा अपना हरप्रीत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके अस्सी तुहाडे कोल आ रहे हैं।

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नमक कार्यक्रम।

तो प्रिय श्रोतागण, आज बहुत खूबसूरत सा सुबह है, मौसम बहुत प्यारा है और आज है 15 तारीख अगस्त सन 2026 और शनिवार का सुबह है, प्यारा सा दिन है, लेकिन मौसम कह रहा है कि कुछ हल्की बारिश होने की संभावना है यहाँ वहाँ हर तरफ नहीं। और आज 6:19 पर सूर्य उदय हुआ है ब्रिस्बेन में और 5:27 पर सूर्यास्त होगा। 22 रहेगा दिन में, रात्रि को 12, हवा का रफ्तार 13 और रिप्स्विच में। इसी प्रकार मौसम होने के साथ साथ 22 दिन में, रात्रि को 8, हवा का रफ्तार 11, सनसाइन कोस्ट में 20, 15 रात को 24 हवा का रफ्तार, गोल्ड कोस्ट में 21 दिन में, रात्रि को 14, हवा का रफ्तार 21। इस समय 11 डिग्री तापमान है साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में और दिन में बढ़ जाएगा, आप जो जानते हैं बहुत नहीं, 11 डिग्री और बढ़ेगा। पहले फिजी द्वीप चलते हैं, नजदीक में है, नैनी चलते हैं जहाँ पर आकाश पर घटा छाई हुई है। 6:30 सूर्य उदय हुआ है और 6:00 सूर्यास्त होगा। आकाश पर घटाई छाई रहते के साथ साथ 26 रहेगा दिन में, रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 5। लंबा समय ज्यादातर बादल घिरे रहेंगे यहाँ पर, 28 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 11 और सुबह में आकाश पर घटा छाई रहेगी यहाँ भी 26 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 10। वेलिंगटन में ज्यादातर आकाश पर घटाई छाई रहेगी और यहाँ पर 12 दिन में, रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 5। ओकलैंड में आकाश पर घटा छाई हुई है, 17 दिन में, 12 रात को 14, हवा का रफ्तार और 7:06 पर सूर्य उदय होगा और फिर 5:45 सूर्यास्त होगा। मुंबई ले चलते हैं जहाँ हल्की बारिश होती रहेगी, 29 अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 27, हवा का रफ्तार 23। अमृतसर में ज्यादातर बादल घिरे रहेंगे, 34 मैक्सिमम, 27 मिनिमम 10 विंड स्पीड। और नई दिल्ली में हल्की बारिश होगी, 34 मैक्स, 28 मिनिमम, 6 विंड स्पीड, 550 सनराइज, 701 सनसेट। तो मित्रों, ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा देर हुआ है मुझे आने में क्योंकि मैं कल बहुत रात हो गया था और अब सुबह हो गई है, तो चलो आपका साथ है, प्यारा सा साथ है। चलो आगे बढ़ते हैं एक मजेदार गीत से। सुबह होगी, शाम होगी, दिन गुजरते जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में बस जीते मरते जाएंगे, ठीक है? चलो इसी से शुरू करते हैं आज का ये संगीत सरगम प्रोग्राम।

जी मित्रों, हम तुम्हारे प्यार में बस जीते मरते जाएंगे, क्या बात है। फिल्म का नाम था वक्त, और वक्त तो आप जानते हैं क्या है। प्यार में कभी हम वक्त के बारे में सोचते ही नहीं, टाइम के बारे में। टाइम आता टाइम चला जाता, बस वही मस्ती में हम झुके रहते हैं। तो ये था बहुत प्यारा सा गीत। और अगला जो खूबसूरत गीत है उसे अलका याग्निक जी इस बार कुमार सानू जी के साथ अदा कर रहे हैं। देखा जो तुमको ए दिल को क्या हुआ है, सुनते हैं। अमला जी, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।

0: जी हाँ मित्रों, तो एक गीत आप सुन रहे थे और समाप्त हो गया गीत। मालूम नहीं क्या है, एक गीत जल्दी से बंद हो गया। और चलो एक विज्ञापन सुनते हैं, और थोड़ा सा मुझे कुछ अटपट लग रहा है कि ऐसा क्या है, क्या क्यों ऐसा हुआ है। तो चलो एक खबर सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: ये मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चले हैं अगला गीत के तरफ। और अगला गीत है दिल है तुम्हारा। ये बड़ा खूबसूरत पिक्चर का शीर्षक गाना है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। सुनते हैं इसे, क्या हुआ

जिन्हें गीत नहीं बजना है, दूसरा गीत बजना है, इसको हम सही रूप से बजाते हैं। दिल है तुम्हारा गीत के बोल हैं और ये प्यारा गीत को आपके लिए बजाते हैं। वीडियो वर्जन है ये और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, मैं हूँ परमानंद संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। आगे बढ़ते हैं, बस

0: या मित्रों, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा गीत आप सुन रहे थे, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ जुड़े हैं हमेशा की तरह पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, सादर प्रणाम एक बार फिर, और स्वागत करता हूं हमारे श्रोतागण की ओर से, उनके तरफ से नमस्कार आपको।
1: परमा जी, आपको भी नमस्कार और प्रणाम, और सुनने वालों को भी नमस्कार और प्रणाम है। और चलते हैं, आज सुंदर प्रोग्राम है, सुंदर सा मौसम भी है, और आपके साथ होकर छोटे छोटे बातें हरदम होते रहती रेडियो में। तो एक तो चंद सूर्य ग्रहण के बारे में हमने कुछ विवरण दिए थे, वो खत्म हो गया है वेंसडे को, और आने वाला जो होगा वो फ्राइडे 28 को होगा। वो चंद्र ग्रहण होगा, वो हमें नहीं दिखाई देगा, वो लगभग 5 बजे शाम को शुरू होकर 6 बजे खत्म होगा। तभी कभी कभी लोग पूछते हैं कि रक्षाबंधन कब बांधना चाहिए, कैसे है, तो अलग अलग लोगों का मत है, और हमारा तो यही सुझाव है कि भाई अगर ग्रहण लग रहा है तो लग रहा है, चाहे इंग्लैंड में लग रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में लग रहा हो, तो उसका तो हम लोग मान्यता देना चाहिए। और ये जो चंद्र ग्रहण है और रक्षाबंधन के दिन है, वो 5 बजे शाम से लेकर 6 बजे तक के बीच में होगा। तो रक्षाबंधन आपको बांधना है तो सुबह में बांध ले, और नहीं तो फिर ग्रहण के बाद, या रक्षाबंधन तो अब शुरू ही हो गया है श्रावण मास का शुक्ल पक्ष में, जो कि थर्सडे से लेकर आप अगले फ्राइडे तक, यानी कि 28 तक बांध सकते हैं। तो जैसे आपका सुविधा हो, बीच में कभी भी बांध सकते हैं। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो रक्षाबंधन ही के समय है, और इस समय शिव जी का भी पूजन होता है, तो यही हमारी छोटी सी सूचना है परमा जी।
0: अच्छा पंडित जी, और कुछ खास, क्योंकि अब तो विंटर जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं।
1: जी हाँ, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, तो कृष्णाष्टमी भी बस आ रहा है, उसी 29 से कृष्णाष्टमी शुरू होगा, और जगह जगह पर होता है, सनातन सेंटर पर होगा और जगह जगह पर होगा, तो आप जरूर बच्चों को लेकर जाए और इस त्योहार को भली भांति मनाए परमा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी समय के लिए, और ये जानकारी प्रदान करने के, ग्रहण वगैरह के बारे में और रक्षाबंधन के बारे में। और हम फिर मिलते हैं एक बार फिर सादर प्रणाम के साथ साथ। हे भाई, आपको आज का दिन बड़ा शुभ और वीकेंड बड़ा मंगलमय हो पंडित जी।
1: जी आपका भी और सुनने वालों का भी धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। तो मित्रों, ये थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, और वही याद दिला रहे थे रक्षाबंधन के बारे में, और इसके बाद में जो 28 तारीख को आ रहा है ग्रहण, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। चलो एक गीत और हो जाए सुबह के इस बेले में। और आज क्या बोलूं मैं, मौसम इतना प्यारा, 11 डिग्री तापमान बोल रहे, लेकिन जब मैं घर से चला मुझे गर्मी लग रही थी। मैं बोला क्या बात भाई, पहले से क्लाइमेटाइज हो गया मैं। तो चलो इस गीत को सुनते हैं, और हरिहरन जी कृष्णा कविता, जी हाँ कविता कृष्णा मूर्ति, उल्टा के मैं बोल रहा हूँ, कविता कृष्णा मूर्ति, फिल्म है क्या कहना।

तो मित्रों, ये शनिवार का सुबह है और 15 तारीख है। मौसम खूबसूरत तो है ही, और ऐसे बस हम सोच रहे हैं कि अनुमान तो है मौसम के खबर में कि बारिश होगी हल्की हल्की, लेकिन ऐसे मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि चलो हम एक बार फिर वही बात करते हैं, पहुंचाते हैं कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं आपको बतलाते हैं मौसम के खबर की तरफ। और मौसम के खबरों में आज साउथ ईस्ट क्विंसलैंड के लिए कहा गया है कि यहाँ का जो मौसम है थोड़ा भीगा भीगा रहेगा और तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 22 डिग्री ही रहेगा। तो पूरे साउथ ईस्ट में 20 से लेकर 22 डिग्री तापमान है। हवा का रफ्तार जो है वो 11 से लेकर 21 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। हल्की बारिश कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसे नहीं लग रहा जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ केंद्रों पर शायद हो, अन्यथा मौसम साफ रहेगा। चलते हैं हम फिजी के तरफ, और फिजी में आप जानते हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो हुई थी और उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने अपील की थी केस का, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बकवास था और कोई इनको लीगल राइट्स नहीं था अपील करने का। और दूसरी बात ये भी है, वो कह दिए कि जो प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इन्होंने गलती की है और सही निर्णय नहीं लिए हैं। और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी थी, पहला भाग का ठीक था, लेकिन इनको कानूनी रूप से वो इंक्वायरी को बढ़ा नहीं कर सकते थे, दूसरा बढ़ा सकते थे। तो अब मामला यहाँ फंसा है, वो खारिज किया है। जितने लोगों के ऊपर चार्जेस वगैरह लगे थे सब खारिज हो गए। अब बोल रहा कि दोबारा बुलाएंगे कोर्ट में सबको और बतलाएंगे कि कितना कितना हर्जाना वह मांग सकते हैं, क्योंकि इनमें माली जो उनको पद से, और लियंग जो हैं उनको भी पद से इन्होंने हटा दिए। कई दिन को चाहिए था उनको दिखाना पहले रिपोर्ट को, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है और इसमें ये लिखी है, और फिर पब्लिक करना था, तो उनको मौका ही नहीं मिला अपने आप को कुछ अपने बारे में बतलाना। तो एक कारण है, बहुत सारे कारण दिए गए हैं, कल के अखबार में छपा था ये। और मैं ये सोच रहा हूँ, अब दिल का ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कितना ज़्यादा पैसा एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी में खर्च हुआ है, और अब जब डैमेजेस भरेंगे सरकार तो कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर दो तीन बात उठती हैं, यहाँ पर अंदर अंदर एक मामूली व्यक्ति भी सोचेगा कि सरकार को कौन बतलाता है, हु आर द एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट, क्या बतला रहे हैं कि ऐसे करना वैसे करना। वहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कोई किसी का सुनता नहीं है? फिजी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे वकील हैं जो सही सलाह दे सकते हैं। तो मालूम नहीं क्यों इंक्वायरी हुई थी और फिर क्या हुआ, अंत में नतीजा देखो 18 महीना चला और आखिरी में क्या हुआ, खारिज हो गया, पूरा सब रद्द हो गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया कोर्ट ने। तो अब देखने बात है, एक दो हफ्ते में पता चल जाएगा कितना हर्जाना सरकार देगा, 40 मिलियन, 50 मिलियन, बहुत लोग हैं, 12-13 लोग हैं जो ये सब क्लेम करेंगे। तो चलो, ये फिजी का थोड़ा सा खबर था। और वैसे तो फिजी का मौसम तो ठीक है, इस समय बारिश नहीं होनी है, कम बारिश है, ज़्यादा आकाश पर घटा छाई रहेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठंड बहुत पड़ रहा है फिजी में इस समय। तो सुबह में 26 रहेगा, दिन में लंबासा में 28 और नेडी में 26। देखिए, ये पहले ऐसे टेम्परेचर हमें मालूम नहीं पड़ता था कि इतना टेम्परेचर होगा। तो चलो, 7:07 हुए हैं और हम पुराने गीतों की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। तो चलें भाई, ऐ हमने कसम ली नहीं होंगे जुदा, क्या बात है, प्यारा सा गीत है, किशोर दाओ का गाया हुआ, और साथ ही में देखते हैं क्या है।

0: मित्रों, ये गीत जो था ये था तेरे मेरे सपने पिक्चर का, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलें दो विज्ञापन हम ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एमसीज इंडियन एंड आलियन फूड्स का पहला खबर।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ एमसीज इंडियन एंड आलियन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Amitra, is samay 13 minute hue hain, 7 bajkar, aur Radio Brisbane, jiska prasaran hum 1700 AM ke madhyam se Severin Meyer Rocks Brisbane, Australia se kar rahe hain. Yahan par 7 bajkar 13 मिनट हो रहे हैं। आगे बढ़े हैं हम। अगला गीत के बोल हैं बहुत प्यारा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितने दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कौन बोल रहा है भाई? देव साहब बोल रहे हैं, सुनिएगा।

0: जी मित्रों, तीन देवियों का ये फिल्म था और उसी से गीत जो किशोर दा अपने साथियों के साथ अदा कर रहे थे। और साथ में कह दूं कि भाई ये जो गाने हैं ना, जब आप लाइव देखोगे, जैसे यूट्यूब पर देखोगे, तो मज़ा कुछ और है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन की तरफ। कुछ और सुनाते हैं विज्ञापन।
1: सत श्री अकाल, मदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा प्रधर भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी थोड़े कोल आ रहे हैं।
2: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
3: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
1: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
3: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
0: जी मित्रों, रेडियो ब्रिसबानी की घड़ी में इस समय 20 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, और पुराने गीतों को जारी करते हुए अगला जो गीत आपके लिए बजाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। चलो हम सुनवाते हैं आपको। अब क्या मैं बोलूं, ये किशोर दा के जो गाने ना बड़े अलग अंदाज के होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो चलो सुनते हैं एक गीत में क्या वो कह रहे हैं।

0: जय मित्रों, जोनी मेरा नाम 1970 का हिट मूवी का एक गीत था और आप सुन रहे थे किशोरदा की आवाज में, उसे साथ में लता जी भी थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दो और खबर।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: जी हां दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 26 मिनट हुए हैं इस समय, अब 27 होने वाले हैं, 7 बजकर, और चले आगे बढ़े, पुराने गीतों का लुफ्त आप ले रहे हैं। अब जो गीत बजाने जा रहा हूँ इसे लता जी अदा कर रही हैं और ए सारा बानो जी, राजेंद्र कुमार पर्दे पर, झुक गया आसमान फिल्म का गीत है।

0: जी मित्रों, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, क्या बात है। और 7:30 बजे हैं, चलें एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं, जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह उन्हें याद कर रहे हैं। अगर आज आपका जन्मदिन है तो बहुत सारा मुबारकबाद हमें यहाँ रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपने पार्टी वगैरह कुछ अरेंज किए हैं तो अच्छी तरह से वो बीतेगा। और साथ में जिनकी शादी की सालगिरह है, क्या बात है भाई, शादी की सालगिरह है, उनको भी याद कर रहे हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जोड़ी सदा सलामत रहे। यही शब्द हैं और हमेशा हम बोलते आ रहे हैं, और अच्छा होता है जब दो व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति, प्यार से अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर पहले लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने थोड़ा कम खबर बजाए हैं। ANZ का एक खबर है, इसे सुनते हैं, दो खबर ले लेते हैं।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: मित्रों, लता जी के बारी एक बार फिर है, और इस बार है, ए समा समा है प्यार का, किसी का इंतजार ना, दिल ना दुखाए कोई मेरा, मौसम बहार का।

0: जय मित्र, ये समा समाए प्यार का क्या बात है, बहुत खूबसूरत सा गीत था ये। और खबर की तरफ हम चलते हैं, ले लेते हैं घी का खबर।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: और मित्रों, आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और आपको बता दूं कि 8:30 बजे टॉप 10 निविया जी लेकर आ जाएंगी। और अब बहुत कुछ हो रहा है ब्रिस्बेन में, बहुत कुछ होने वाला है। पंडित सूरज जी बहुत कुछ कह चुके हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, सबको बड़ा बहुत मुबारक हो राखी का। तो कल मैं बैठा था अपनी बहन और जीजा के घर पर और कुछ छेड़छाड़ हो रहा था, तो गीत का वहाँ बात हुई, तो मैं सोचा नहीं था बजाने का, लेकिन फिर मैंने बोला यार जिस तरह के माहौल था वहाँ पर शाम का रात्रि का, क्यों ना चलो सुना ही देते हैं, शायद तो सुन भी रहे होंगे। सुनते हैं इस गीत को।

0: मित्रों, बाबला जी का संगीत पर एक खूबसूरत सा जो सुर आप सुन रहे थे कंचन जी का था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ये थोड़ा बहुत हुआ हंगामा वगैरह, रात्रि की कुछ बातें हुई तो उन्होंने छेड़ा है गीत को, मेरा नाम आ गया, मैंने सोचा चलो वो भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: me? May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और मित्रों, रेडियो ब्रिजबैंड की घड़ी में 7:45 बजे हैं और अभी आप कुछ पुराने गीतों को सुने और अब हम ले चलते हैं आपको नए गीतों की तरफ. जो कोई पूछे बिल्कुल नया गीत है, इसे अभिजीत श्रीवास्तव और सारिया अपूर्वा अदा कर रही हैं.

0: तो मित्रों, ये पहला नया गीत था आज का जो आप सुन रहे थे, और हम आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं खबरों की तरफ। एक खबर एक बार फिर।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हाँ अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हाँ। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
0: क्वींसलैंड
1: सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: और गीतों को बढ़ाते हुए जुबिनिल नौटियाल साथियों का गाया हुआ यह गाना जोर की बरसात हुई।
2: इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था।

0: जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजवानी सुन रहे हैं। चलें अगला गीत के साथ। और 8 बजे याद रहे, रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया रहेगा। और अब चलते हैं, एक गीत आपके लिए बजाते हैं और उसके बाद देखते हैं और क्या होता है। ढूंढ रहा था मैं तो कोई बात नहीं, आया नहीं, क्यों नहीं आया, चलो ढूंढते हैं, इसको बाद में ढूंढना पड़ेगा। गीत बड़े मालता, चलो विज्ञापन बजा देते हैं पहले, जब तक गीत ढूंढ रहा हूँ विज्ञापन बज जाए। 2 बजेंगे।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: चलो आगे बढ़ते हैं जी। गीत के बोल हैं जोगीरा, सुनाते हैं आपको।

0: इस गीत के साथ साथ 8 बज गए हैं और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपकी सेवा में पेश करेंगे। तो सर्वप्रथम चलते हैं रानी क्रिएशंस का ये विज्ञापन सुनते हैं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, रानी क्रिएशंस आपका तहे दिल से स्वागत कर रही, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, केम शो भेज रही है और कह रहे हैं कि भाई शनिवार है, मौसम आहिस्ते आहिस्ते सुधर रहा है, यानी कि ठंड आहिस्ते आहिस्ते जा रही है, लेकिन तापमान तो कहता है कम है, लेकिन जब मैं उठा सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ तो मुझे तो गर्मी लग रही थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका दिन भी अच्छी तरह से गुजरे। और फॉर शॉपिंग नीड्स रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस, 33 बलक्लावा स्ट्रीट, उलंगेवा। सप्ताह के सातों दिन खुलते हैं, आज 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक शॉप खुली रहेगी। कल रविवार है, 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक खुली रहेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार है और लोग राखी धागा वगैरह बांधते हैं, और इस शुभ अवसर पर रानी क्रिएशन शॉप में आपको राखी और धागा वगैरह सब मिलेगा। तो आइए और जो भी आपको खरीद बीन करना है वो ले सकते हैं, और साथ में किसी तरह का गिफ्ट या उपहार अगर देना है बहन को या किसी और को तो आप वो भी आकर बहुत ही घटाए हुए दाम पर खरीद सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक ब्रांड न्यू सॉन्ग आया है और श्रेया घोषाल जी और नेहा कक्कर जी ने अदा किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो प्रवीण भाई, राम राम आपको, और चलो प्रदीप भाई आपको भी इसमें शामिल कर रहा हूं मैं, आनंद लीजिएगा।

0: जय मित्रों, दिल का शहजादा, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा है गीत। बिल्कुल नया गाना है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगे। और ऐसे गाने जल्दी नहीं बनते, आजकल धुन बड़े अच्छे बनने लगे हैं और गीत भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और कपड़ों के लिए बतला दें कि साड़ी वगैरह जो है साड़ीज फ्रॉम $35, और वैसे कैजुअल आप लेना चाहते हैं तो उसे भी कम भाव में मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ पने पनाने के लिए बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह हैं। और साड़ीज के साथ आप जानते हैं कि अंडा स्केट्स और ब्लाउजेस भी जरूरी है, तो आप आकर रैंडम सिलेक्शन में ले सकते हैं, या फिर साड़ी विद ब्लाउज ले सकते हैं, या रेडीमेड साड़ीज भी ले सकते हैं जिसके साथ ब्लाउज बनकर आता है। तो ये अगर आप खरीदेंगे तो आपको विशेष छूट मिलेगा। और साथ में लहंगा वगैरह, बाकी महिलाओं के लिए सब तरह के कपड़े हैं, मर्दों के लिए भी सब कुछ है यहाँ पर, शादी से लेकर आउटिंग का, पूजा पाठ में जाने का, स्टॉल्स वगैरह, एक्सेसरीज। बस अगर आपने घूमा नहीं है कभी दुकान, तो एक बार जरूर दर्शन करें और देखें यहाँ क्या मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, भूल न जाना। सर्वप्रथम आप हिमेश जी की आवाज सुनेंगे, फिर रूपम जी का।
1: तुमने जगाया मोहब्बत में दिल को धड़कना, सिर्फ तुमने सिखाया।

जय मित्रों, भूल न जाना, नहीं लड़ा के आँखियाँ लड़ा के आप सुन रहे थे और उम्मीद कर रहा हूँ गीत आपको अच्छा लगा होगा। आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उसी के अंतर्गत रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आप सुन रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो गीत आप सुने हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलें कुछ अंश तक यह नया गीत भी सुना दूँ आपको, तेरे मस्ताने नैन।

0: जी मित्रों, इस गीत को यहाँ रोकता हूँ, लेकिन आपको निराश नहीं करूंगा, नेक्स्ट सेगमेंट में बजाऊंगा। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, और आपको याद दिला दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है और रानी क्रिएशंस शॉप में राखी और धागे वगैरह उपलब्ध हैं, आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं, और साथ में गिफ्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे और पैसा का बचत होगा, और बाकी कपड़ों पर सेल चल रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन, और चलो आगे बढ़ते हुए समाप्ति पर हम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने साथ दिया, और रिमेम्बर इफ यू हैवन बीन टू रानी क्रिएशंस शॉप विजिट वंस। घरेलू वातावरण है यहाँ, सब कुछ मिलता है, और बस घरेलू वातावरण में शॉपिंग करेंगे, दिल खुश होगा, पैसा भी बचेगा। तो इन शब्दों के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, रानी क्रिएशंस की ओर से गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल डे, हैप्पी शॉपिंग एट रानी क्रिएशंस।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8:15 बजे हैं, और आगे चलते हुए चलें तेरी मस्ताने नैन पूरा करते हैं।

0: जी मित्रों, बहुत खूबसूरत दो गाना था, ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ये कुछ मिल जाते हैं कभी कभी, जब हम रिसर्च करते हैं कौन गीत बजाना है, कब बजाना है, तो ये आ जाते हैं। तो चलो,
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
0: और आगे बढ़ें, जबकि 19 मिनट हुए हैं 8 बजकर, कुछ चुने हुए नए गीतों को आप इस समय सुन रहे हैं। अगला जो गीत है, काफी है ना, गीत के बोल हैं, और ये जोनीता और गर्वित, प्रियांश, ये सब अदा कर रहे हैं इसे।

0: जी मित्रों, कुछ नए गाने आप सुन रहे थे, काफी है ना। और एक खबर ले लेते हैं और फिर समय आ जाएगा अंतिम गीत का, तो उसे हम बजाएंगे।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत है वो, इतना कहा नहीं जाता। उदित साहब अदा कर रहे हैं बस आपके लिए। मित्रों, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड, गॉड ब्लेस यू।

अमित रॉय, इस गीत को यहीं पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि अब समय नहीं अलाउ कर रहा टू गो एनी फर्दर। अगले शनिवार को फिर एक सेगमेंट में कुछ ऐसे ऐसे गीत लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली वीकेंड। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजभानी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दुनिया में रह रहे सभी भारतीयों को। जी हाँ, चाहे वो जिस भी कोने में रह रहे हो, सभी भारतीयों को हमारी तरफ से आजादी के इस परम महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज ही के दिन भारत और भारतवासियों को आजादी मिली थी और आज ही के दिन उन्होंने आजादी से जीना भी सीखा था। जी हाँ, ये दिन बहुत ही बड़ा है क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत वक्त तक हम पर राज किया, लेकिन उस राज के बाद भी जो बाजी है वो हमने मारी और हमने आजादी अपने आप को दिलाई। जी हाँ, हमारे पूर्वजों ने ये आजादी अपने खून से हमें दिलवाई और ये चीज हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, सो जैसे मैंने कहा कि इस दुनिया में जिस भी कोने में जो भी कहीं भी अगर भारतीय रह रहे हैं तो सब आज फील करेंगे, वो जज्बा फील करेंगे जिस जज्बे से इस आजादी को हासिल किया गया था। जी हाँ, इसी के साथ अब आपको तो पता ही है आज वीकेंड भी है और वीकेंड के साथ साथ 15th of August भी है, यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है आज। तो एक गाना है जो ट्रेंड कर रहा है, वैसे भी हम ट्रेंडिंग गाने ही आज आपको सुनाने वाले हैं, 10 चुनिंदा गाने, और वो जो गाना है वो है छल्ला। जी हाँ, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का छल्ला सॉन्ग जो है वो बहुत ट्रेंड कर रहा है, इनफैक्ट वो इस लिस्ट में है और वही गाना है 10वें नंबर का इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। ऑल्दो मूवी जो है वो 7 साल पुरानी है, बट इसका ये गाना जो है वो आपको जज्बा जरूर दिखाता है। जी हाँ, यहाँ पर सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है और गाना आपने बहुत ही जज्बे वाला सुन लिया है और आज जो है वो बड़ा ही मतलब गदगद फील हो रहा है अपने अंदर, राइट? मतलब खुशी भी है लेकिन याद भी करना है कि किस कीमत से ये आजादी मिले और बहुत वक्त लगा है इस आजादी के लिए। तो मैं हमेशा कहूंगी कि अपनी जिंदगी को आजादी से जीना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, एंड व्हेन आई से आजादी, आजादी सिर्फ वो नहीं होती जो हमने हमेशा से सीखा है, मतलब वो तो आजादी है ही, लेकिन अपने बुरे थॉट्स से आजादी, जी हाँ, बुरे लोगों से आजादी, जी हाँ, बुरी आदतों से आजादी, वो भी आजादी है। सो हमेशा आजादी को सेलिब्रेट कीजिए बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही यूनिक तरह से। कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुरी आदत, इन सबको छोड़िए, क्योंकि आजादी आपको लिबरेटेड फील करवाती है और वही लिबरेशन हमें अपनी जिंदगी में जरूरत होती है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ, जो कि ये 9वें नंबर का गाना है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का, और गाने का नाम है इश्क कमीना 2.0। जी हाँ, इश्क कमीना तो आपने पहले भी सुना है लेकिन ये है 2.0 वर्जन। सुनिए इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और गाना हो गया है लिस्ट में और ये मूवी जो है वो थिएटर्स में अभी भी लगी हुई है। जी हाँ, बेबी डू डाई डू। जी हाँ, और ये इश्क कमीना 2.0 वर्जन उसी मूवी का है। इसमें हुमा कुरैशी आपको बहुत ही बैडास कैरेक्टर में नजर आने वाली है। सो इफ यू लाइक थ्रिलर मूवीज, या दिस वन इज फॉर यू। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये है अल्फा मूवी का। अल्फा मूवी जो है वो थिएटर से उतर चुकी है, लेकिन इसके गाने अभी भी इधर है। शर्वरी बाग, आलिया भट्ट, बॉबी डोल और अनिल कपूर के साथ ये रही आपकी

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं आगे की ओर. और आपको तो पता ही है वीकेंड है, तो वीकेंड पे बहुत कुछ हो सकता है. और सबसे पहले क्या आप देख सकते हो मूवीज के फ्रंट पर? मूवीज कौन कौन सी रिलीज हो रही है? वेल, दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई है इस हफ्ते एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मूवीज. जी हाँ, सबसे पहले बटवारा 1947. जी हाँ, आज जो है वो है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे. लेकिन पिछले कल एक मूवी रिलीज हुई है और उस मूवी का नाम है बटवारा 1947 यानी कि 1947. और इसमें सनी देओल है, प्रीति जिंटा है और साथ में बहुत ही जबरदस्त एक्टर है. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये गदर जैसी है क्या? वेल ऑफकोर्स ये गदर जैसी हो सकती है आप के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो मामला वैसा ही चल रहा है, क्योंकि उस ये भी बंटवारे के वक्त की ही मूवी है. लेकिन इस बार सनी देओल जो है वो कोई डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब वो दूसरी तरफ हैं. दूसरी तरफ कौन सी तरफ? वेल, वो आपको पता चल जाएगा. और सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ में और भी बड़े बड़े जो है वो बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स इसमें आपको नजर आने वाले हैं. और आपको पता ही है कि सनी देओल की ये एरिना है. जब भी गदर या गदर 2 आई है उन्होंने लिटरली बवाल मचा दिया है. सो आई थिंक ही कैन डू इट टू विद दिस मूवी. और यहां पर वो क्या कमाल करते हैं, लेट्स सी जब नंबर्स आएंगे. तो ये मूवी लगी हुई है और इसके अलावा मूवी लगी है आवारापन टू है दिशा पाटनी एंड साथ में इमरान हाशमी की मूवी. जी हाँ, इमरान हाशमी आ गए हैं वापस एक मूवी के साथ और इसके गाने वैसे ही हैं जो आपको एकदम रातों को सोने नहीं देते, आपके दिमाग में बज करते रहते हैं. जी हाँ, और इसी का गाना है जो आज लिस्ट पे नंबर 1 बना हुआ है. गेस वॉट, कौन से गाने की बात हो रही है? जी हाँ, सो आवारापन 2 और बटवारा 1947 कैन बी योर चॉइस. इसी के साथ एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि इस लिस्ट में आगे का यानी कि 7वें नंबर का गाना है. और फिर करते हैं और भी बातें और कौन कौन सी मूवीज आप देख सकते हो.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने वाली हूँ हॉलीवुड मूवीज के बारे में जो कि लगी हुई हैं इस वीकेंड थिएटर्स में और आप उन्हें देख सकते हो। जी हाँ, द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। जी हाँ, द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट जो है वो मूवी है जो कि रिलीज हुई है इसी हफ्ते और मैं आपको इस मूवी को हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ। रीजन बीइंग, आप गेस कीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो व्यस्त है और एकदम से आपको पता चलता है कि आपका जो पूरा का पूरा मोहल्ला है, मतलब पूरा का पूरा टाउन है, वो डायनासोर एरा में पहुंच गया है। मतलब आपका जो एरिया है वो पूरा एज इट इज डायनासोर एरा में पहुंच गया है और वहां पर कोई वाईफाई नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, आप हो और वो बाकी सारी अजीबो गरीब चीजें हैं जो आपके लिए यहां पर तैयार बैठी है। मतलब आप टाइम लैप्स करके किसी और ही टाइमलाइन में चले गए हो और आपको पता नहीं है कैसे निपटना है। सो ऐसे में आप क्या करोगे? आप घर से बाहर निकलते हो तो डायनासोर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, अजीबो गरीब जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इससे निपटा कैसे जाए। अब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, पड़ोसी या एक दूसरे की मदद करेंगे या नहीं करेंगे, वेल यही है कहानी। जी हाँ, द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट, जरूर देखिए, एन हाथवे की मूवी है और इट्स अ साईफाई, इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ मिस्टीरियस मूवी And it's a very adventurous movie. So go for it, क्योंकि इसी हफ्ते रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं Spider-Man The Brand New Day, $2 billion कमा चुकी है ये मूवी, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ऑलमोस्ट। जी हाँ, और दूसरी The Odysseus यानी कि The Odyssey जो कि अगेन $1,300 million कमा चुकी है, उसके लिए भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक चीज कॉमन है दोनों में कि दोनों में ही टॉम हॉलैंड ने एक में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एक में तो मेन कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यही मूवीज हैं हॉलीवुड के फ्रंट पर जो लगी हुई हैं थिएटर्स में। गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और गाना आपको सुनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। गाने का नाम है इश्क मस्ताना फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ आधी लिस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी की आधी बची हुई है जिस पर हम पहुंच गए हैं। वेल, अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है टॉक्सिक मूवी का, जो कि रिलीज होने वाली है। इसके रिलीज होने में कुछ 10 दिन बाकी है और टॉक्सिक मूवी कितनी टॉक्सिक होने वाली है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इसका जो ट्रीजर है वो काफी टॉक्सिक है। मतलब लिटरली काफी टॉक्सिक ट्रेलर है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दे हैव नेम द मूवी टॉक्सिक। जी हाँ, अब इसमें है यश, और यश के अलावा बहुत सारी और नायिकाएं हैं। जी हाँ, फिर चाहे वो हो तारा सुतारिया, फिर चाहे वो कियारा आडवाणी हो, फिर चाहे वो और भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हो, मतलब बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक नायक और बहुत सारी नायिकाएं। और क्या क्या है इसमें, बहुत सारी मार कटाई चल रही है। जी हाँ, बहुत मार धाड़ होगी और बहुत कुछ होगा। वेल, टॉक्सिक नाम है इसका, लेकिन गाना जो है इसका, जो कि इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 में लिस्ट में कर रहा है ट्रेंड, उसका नाम है मदहोश। जी हाँ, मतलब गाना मदहोश है, टॉक्सिक मूवी है।

गाना तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है और मदहोश करने वाला कितना होगा वो तो केमिस्ट्री देख के ही पता चलेगा। लेकिन ये तारा सुतारिया और यश का गाना है, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉक्सिक मूवी से रिलेटेड बड़ी ही टॉक्सिक सी खबर उड़ती उड़ती आ रही थी। जी हाँ, उसमें कहा जा रहा था कि कियारा आडवाणी को कुछ सीन से प्रॉब्लम है और वो चाह रही थी कि वो सीन्स जो है वो मूवी से हटा दिए जाए रिलीज से पहले। और उन्होंने डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स से बात भी की, उन्होंने कहा कि कुछ सीन्स जो उन्होंने शूट किए हैं यश के साथ, जब वो शूट कर रही थी तब उन्हें इतने बुरे नहीं लगे, लेकिन जब वो फिल्म हो गए हैं, जी हाँ, वो पूरी तरह से हो गए हैं, खत्म हो गई है उनकी एडिटिंग, तब वो अजीब लग रहे हैं और वो अच्छे नहीं लग रहे हैं और वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। सो इसलिए वो चाह रही थी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उसे हटा दें, बट टर्न्स आउट कि डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने वो सीन्स नहीं हटाए हैं। वेल, इसमें क्या और चेंजेस आते हैं मुझे नहीं पता, बट कियारा आडवाणी को कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है और उससे वो नहीं हटाया जा रहा है, बट पहले वो रेडी हो गई थी उन सीन्स को करने के लिए, अब उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है वो अलग बात है। जी हाँ, डेफिनेटली अलग बात है। यहाँ पर टॉक्सिक रिलीज हो रही है 26 को और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ जो कि है ऊंचा लंबा कद। जी हाँ, ऊंचा लंबा कद मतलब लंबा हाइट वाला जो है हाइट वाला हाइट। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा अगर तुम्हें समझाना नहीं आ रहा तो तुम मत ही समझाओ, पर ये हाइट वाला हाइट क्या होता है, मतलब ऊंचा लंबा कद कद मतलब हाइट। जी हाँ, आई डोंट नो, आप खुद ही समझ जाइए। जी हाँ, ये है गाना आपके लिए और इसी के साथ वेलकम टू द जंगल कहाँ आप देख पाओगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सुनिए इस गाने को।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी तो जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये अमेजोन प्राइम पर भी रिलीज होगी ऐसा भी कहा जा रहा है। इसकी डेट जो है वो 21 अगस्त कही जा रही है। इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अभी तक रूमर डेट है, ये मेकर्स की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, मेकर्स ने कुछ भी अनाउंस अभी तक नहीं किया है। लेकिन ये गाना जो है वो जबरदस्त है क्योंकि ये गाना जो है वो पहले ही काफी तबाही मचा चुका है। जब वेलकम वन आई थी, मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी जब ये मूवी आई थी। आई मीन छोटी, इतनी छोटी भी नहीं थी, बट द थिंग इज कि मैं स्कूल में पढ़ती थी जब ये मूवी आई थी और कैटरीना कैफ इतनी सुंदर लग रही थी। अब अगर मैं देखती हूँ कि कैटरीना कैफ और दिशा पाटनी के मुकाबले कैटरीना का कोई मुकाबला नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन एंड में कैटरीना के लिए और दिशा ने एक मैसेज भेजा है, वी मिस यू कैटरीना। ऑफ कोर्स वी आल्सो मिस यू कैटरीना बिकॉज योर मैजिक इज इंडिस्पेंसिबल। दैट्स इट। यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाते हैं और वो है मस्कारा, और ये है मूवी मैं वापस आऊंगा का गाना, और मूवी है नेटफ्लिक्स पर। देखिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you.
6: दोस्तों इसी के साथ अब बिना जी हाँ दोस्तों अब इसी के साथ बिना देर किए चलते हैं हम अपनी लिस्ट में आगे की ओर। जी हाँ, और उस लिस्ट में अब बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि हम नंबर 2 और नंबर 1 सॉन्ग पर पहुंच गए हैं और दो

जो है वो रिक्रिएट किया गया है, ऑलमोस्ट रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैं सेम गाना सुन रही हूँ। आवारापन मूवी का ये गाना आवारापन 2 में भी डाला गया है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट टचेस के साथ, लेकिन वो तो नंबर 1 गाना है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं माशूका के बारे में। जी हाँ, माशूका यानी कि जो नंबर 2 सॉन्ग है उसके बारे में बात हो रही है, और ये है कॉकटेल 2 का गाना, और सुनते हैं इसका और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ये कि गाना ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ऐसा हर दिन नहीं होता, हर हफ्ते नहीं होता, हर महीने नहीं होता, बल्कि हर साल भी नहीं होता जब हमें सालसा करने के लिए एक खूबसूरत सा गाना मिले। मतलब ऐसा गाना जो सेक्सी फील करवाए, जो हॉट फील करवाए और जो ऑलरेडी अट्रैक्टिव फील करवाए। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वुमेन कहती है। लेडीज का कहना है कि माशूका उन्हें इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि वो उन्हें वैसा फील करवाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ, माशूका के साथ, मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि कॉकटेल 2 हो चुकी है रिलीज OTT पर, नेटफ्लिक्स पे आप इसे देख सकते हैं। और इस हफ्ते और आप क्या क्या देख सकते हैं, वेल वो था तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता, वही वाला गाना। आवारापन मूवी का गाना था वो पहले, और अब ये आवारापन 2 का गाना है। इन्होंने इस गाने को रिक्रिएट किया है थोड़े से डिफरेंट टचेस के साथ। सो या ये है गाना नंबर 1 सॉन्ग इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का, थोड़ा सा

टोन में है, बट इट इज व्हाट इट इज, एंड ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, सैड है बट बहुत ही खूबसूरत। तो सुनते हैं इसको और अब आपसे इजाजत में चाहती हूँ, मिलूंगी आपसे मंडे को यानी कि इवनिंग वाइब में, तब तक के लिए आप मजे कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: me? May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Sat Sri Akaal, madam, namaskar, dosto, main haan tuhanu apna Harpreet. Ek baar phir Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe hain.
4: Legend Harbhajan Mann live in Brisbane
5: Saturday 15th August 6:30 PM
3: Milde hai ji Brisbane vich
5: at Brisbane Central Auditorium Mount Gravatt. Tickets at Premier Tickets.
6: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
7: ਆਇਆ ਕਿਆ?
8: ਆਏਗਾ।

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।